بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا

0: हलो पुरानो नज़लो निछो मथे जो सूर नज़र जी कमजोरी कन जो वण कन जो सूर घट बुधण में अचण शुगर ब्लड प्रेशर दिल जा मर्ज फालिज खंघ टीबी मादे जी अल्सर मादे जी जलन दिली जो वधण जिगर जा मर्ज हेपेटाइटिस बी सी गुर्दे जी पथरी मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जी कामयाब इलाज कयो वञे थो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी खारिश फट फुरड़ियों ॿारनि में कद जो न वधण मर्दन ऐं औरतुनि में वज़न जो न वधण उन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वञे थो राब्ते लाइ 03-01-2196-851
1: अस्सलाम वालेकुम अदा
2: वालेकुम अस्सलाम अदा छो परेशान आई
1: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो छा कजे
2: अदा दुकान जी मशवरी कराई थई
1: न अदा
3: यार आज कल शहरन तोड़े गोठन में जी मेरापुर एफएम 94 ही हले थो मु पंजो दुकान खोलियो तो एफएम मेरापुर ते पब्लिसिटी कराई कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे
1: मुझे दुकान जी बेड हलंदी
2: हां दा कारोबारी इश्तिहारात आम इतला मिलाद मजलिस सालगिरह जी मुबारक मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी
1: अदा जल्दी कर मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा
3: ऑफिस जी मेरापुर एफएम 94 नज़ गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मेरापुर
2: राबते लाए हाकिम अली जिसकानी
4: 03013992836
5: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है सुनते रहो जी एफएम 94

0: अब आप सुनेंगे जीए एफएम
1: जे में सखर लाड़काणो मीरपुर खास मोरो मेहरापुर सकरंड मटियारी ऐं मातली स्टेशन तां तव्हां असांजो प्रोग्राम ॿुधो पिया जीए एफएम एटीआर जे नेटवर्क तां ऐं मां मुंहिंजो मेज़बान नेमतुल्लाह जुणे जो साईं जा चवंदा आहिनि त इल्मु इंसान जी टीं अखि आहे ऐं इल्मु जेको आहे सो टीं अखि ईअं आहे जो इंसान जेको अंधो आहे इल्म खां उनखे सॼो करे थी ऐं इल्मु हासिलु किथां करे कजे थो उहो आहे असांजो तदरीसी जेको अमल आहे जेको असां पढ़ाऊं था इल्मु पिरायूं था उहो आहे इस्कूल त साईं मुंहिंजा इस्कूल उहो आसमानी ककर आहे जेको इंसानी घेराबाद ज़मीन खे इल्म जे फुड़नि सां सैलाब ऐं शादाब करे थो इस्कूल उहो कारखानो आहे जिते इंसानी मशीननि जा पुर्ज़ा तयारु कया वञनि था इस्कूल उन ई स्टेशन जो नालो आहे जिते इंसानी ज़िंदगी जे नाले हर क़िस्म जे माल जा गोदाम मौजूदु आहिनि स्कूल उहो पारस पथर आहे जंहिंखे लॻण सां इंसान जी दिलि सच थियो पवे ऐं साईं मुंहिंजा स्कूल दुनिया जे कुल्फ़ जी कुंजी आहे तव्हां ॾिठो हूंदो त वकील वज़ीर हाकिम पुलिस जज हुनरमंद सियासतदान साइंसदान डॉक्टर इंजीनियर वग़ैरह सभु स्कूल जा पैदावार कयल तयारु थियल आहिनि स्कूल क़ौम जे फ़ैसिला कुन कोरट आहे ऐं उते ई क़ौम जे आईंदे जो ख़्यालु करियो पंहिंजे ॿारनि खे स्कूल जे ख़ूबसूरत ज़ेवर खां महरूम न कयो मतिलबु त स्कूल ई दुनिया जी इंसान ज़ात जे हर सुधारे जो वाहिद वसीलो आहे जिते ॿार पढ़ी करे ऐं पंहिंजे मंज़िल ते पहुचनि था

सेमी जा प्रोग्राम रोशन सुबुह महमूद पिया जी एफ एम एटीए जे नेटवर्क तां ऐं पाण ॻाल्हि कंदासीं सिहत जी, आराम जी ऐं निंड जी। त सिहत ऐं ख़ूबसूरती लाइ भरपूर निंड तमामु ज़रूरी हूंदी आहे। निंड जो ख़ूबसूरती सां गहिरो तालुक़ु आहे। निंड खां सवाइ तव्हां ख़ूबसूरती जी उमेद बि नथा रखी सघो। आमतौर ते हर माण्हू रोज़ानो राति जो 7 खां 8 कलाक आराम करे थो। अक्सर केतिरा माण्हू आराम घटि कंदा आहिनि। आराम करण दौरान माण्हू जो जिस्म हार्मोन्स पैदा कंदो आहे, जंहिंसां इंसान खे तवानाई हासिलु थींदी आहे, जंहिं करे माण्हू 3 खां 4 कलाक वधीक कमु करे सघे थो। जीअं आम पाण अॼुकल्ह जी चवंदा आहियूं त मोबाइल जी चार्जिंग घटि आहे, जेकॾहिं मोबाइल जी चार्जिंग हूंदी आहे त काफ़ी टाइम हली वेंदी आहे। त साईं जा असांजो जिस्म बि ईअं आहे, जेकॾहिं असां जेतिरो आराम वधीक कंदासीं, जेतिरी निंड वधीक कंदासीं, त असांजे जिस्म जी बैटरी बि चार्ज हूंदी। ऐं निंड दौरान फितरी अमल ज़रिए इंसानी जिस्म जा जेके सेल्स आहिनि उहे ताज़ा थी वेंदा आहिनि। निंड सां दिमाग़ खे सुकून मिलंदो आहे, जेको जिस्म जे मुख़्तलिफ़ मुतालबनि खे पूरे करण में मदद ॾींदो आहे। ऐं सोच वीचार करण में आसानी थींदी आहे। तव्हांजी चमड़ीअ खे जिन शयुनि जी ज़रूरत हूंदी आहे, त सॼो ॾींहुं कमु करण सां तव्हांजी चमड़ी जा जेके टिश्यूज़ आहिनि सुकण लॻंदा आहिनि ऐं अव्हां जूं अखियूं कुझु न कुझु ॾिसंदियूं रहंदियूं आहिनि। मुस्कराइण या ॻाल्हाइण में बि हरकत हूंदी आहे। सुम्हण दौरान जिस्म जूं सभु हरकतूं रुकिजी वेंदियूं आहिनि ऐं अहिड़ी तरह माण्हूअ खे आराम मिलंदो आहे। ऐं आराम इंसान लाइ बहितरु आहे, निंड बहितरु आहे। कोशिशि कयो पंहिंजे वक़्त सर आराम कयो, सवेर सुम्हो सवेर उथो, इहो ई हुकुम आहे। ऐं उन सां इंसान जे जिस्म जूं बीमारियूं ख़तमु थींदियूं आहिनि ऐं इंसानमंद सिहतमंद रहंदो आहे इंसानु।

जी हा समन कुझु दोस्तनि जा नाला अव्हां ताईं पहुचाईंदा हलंदासीं। ॻोठ सुमराणी ईंदड़ लॻे पनवाकिल खां हाफ़िज़ अमीनुल्लाह काज़ी ऐं हाफ़िज़ नईमुल्लाह काज़ी इमदादुल्लाह ऐं मीरपुर ख़ासि खां अज़ीज़ सोलंगी भुट्टो सोलंगी ऐं नूरहमन सोलंगी ऐं असांखे यादि कनि पिया ॻोठ मोलड़े माशी लॻे वॾनि वारनि खां ज़मीर हुसैन सोलंगी, मुख़्तियर अली ऐं ज़हीर अब्बास वफ़ा हुसैन सोलंगी, ॻोठ कंगन खां गुलाब खान कुंभर, शोएब अली ऐं ग़ुलाम रसूल कुंभर, ॻोठ हसू जतोइन खां मोहम्मद मूसा जतोई, यार मोहम्मद नसर लाइ जतोई, ॻोठ मोहम्मद कासिम चांडियो खां अली अकबर चांडियो, मोहसिन अकबर, अहसन अकबर, फहद अकबर, अहद अकबर ऐं शादाब चांडियो, ऐं ॻोठ छुटो मक्सी लॻे कंगन खां सिकंदर अली मक्सी, अकबर खान मक्सी, ऐं यार मोहम्मद कलोड़ा कॉलोनी लाड़काणे खां इरशाद अली महेसर, फ़क़ीर एजाज़ अली कलोड़ो, डॉक्टर रिज़वान अली कलोड़ो, माजिद अली जतोई ऐं निसार अली जतोई।

जी आसमिन प्रोग्राम है रोशन सुबह रोशन सुबह प्रोग्राम में तवां सां असांजो साथ रहंदो ठीक 11 वगे ताईं कॾहिं बि न वञिजो असां हिन त हलूं पिया न्यूज़ ब्रेक जी तरफ़ ऐं कमर्शल ब्रेक जी तरफ़ वरी वापसि ईंदासीं।

0: आशिक होंडा शोरूम मेहरापुर एटलेस होंडा मोटरसाइकिल चौक पर एतमाद अइमा अख्तियार 3S डीलर आशिक होंडा मोटर्स मेहरापुर जिते नई मोटरसाइकिल जी सेल कंपनीया जे मुकरर कर रेट दे दस्तियाब आहे सर्विस सेंटर एटलेस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे होंडा कंपनीया जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद आशिक होंडा मोटर्स ते पंहिंजे होंडा मोटरसाइकिल जी ट्यूनिंग करायो कंप्यूटराइज जैपनी स्टेचिंग मशीन जे जरिए जिनमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वन्य थी होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी जैर निगरानी आशिक होंडा मोटर्स एड्रेस इंडस बाईपास नस्त रेलवे लाइन मेहरापुर राप्ति जिलाई आसिम हुसैन आराई 0307-3592120
1: खुशखबरी लेजर हेयर रिमूवल गैर जरूरी बालों को खत्म करने का जदीद हल अब फिक्र छोड़िए आपके शहर मेहरापुर में गिम्स अस्पताल गंबर्ट जिल्द के मशहूर डॉक्टर बशीर अहमद मेमन लेकर आए हैं चेहरे बाजू टांगे और पूरे जिस्म के गैर जरूरी बालों को खत्म करने के लिए महफूज और मौसर ट्रीटमेंट बार बार वेक्स और शेविंग से निजात नरम साफ और खूबसूरत जिल्द कम वक्त बेहतरीन नतायज अब गैर जरूरी बालों की फिक्र खत्म लेजर हेयर रिमूवल के साथ आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक नज़द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद थरी रोड मेहरापुर 0300-338-5569
2: अपना शहर अपना घर मेहरापुर और मेहरापुर की आवाज GAFM 94

जी हाँ, समय ने वापस अची कहीं प्रोग्राम रोशन सुबुह में ऐं प्रोग्राम रोशन सुबुह मां ॿुधो पिया जी एफ एम 88 जे नेटवर्क तां ऐं मां जो मेज़बान नेमत अला जुणे जो साईं। मुंहिंजा इंसानी जिस्म में काफ़ी बीमारियूं थियनि थियूं, जंहिंमें डिप्रेशन बि हिकु बीमारी आहे। दुनिया में माण्हुनि खे जेकी नफ़्सियाती मामला ऐं मसाला थियनि था, उन्हनि खे आमतौर ते डिप्रेशन कोठे वञे थो। डिप्रेशन जा मुख़्तलिफ़ सबबु थियनि था, जिन में को घरू सदमो, ॾुखु या मुआशी मसाला या बेरोज़गारी, उहे चंद सबबु आहिनि जंहिंजे करे उहा सूरत हाल पैदा थिए थी। पर जेकॾहिं को डिप्रेशन जो शिकार ऐं उन्हनि मंझां को बि सबबु उन ते लागू नथो थिए, त पोइ उन जो असुलु सबबु ॻोल्हण लाइ ॾुखियो थी वञे थो। हक़ीक़त इहा आहे त डिप्रेशन जो हिकिड़ो वाज़ियो सबबु इहो बि थी सघे थो त काफ़ी असांजी ज़िंदगी में जेकी शयूं लागू आहिनि उन में काफ़ी दोस्त नशो वापराइनि था ऐं उन मां उन मर्ज़ खे ॻोल्हे सघिजे थो। मसलनि घटि निंड करण वारी आदत बि हूंदी आहे ऐं घटि निंड करण सां डिप्रेशन में वाधि जो ख़तरो थी सघे थो। त सोचण सां बि डिप्रेशन में हली वञे थो, माण्हू सोचे न। जेतिरो इंसान खे ॻणिती आहे, परेशानी आहे, कहिड़ो बि मसइलो आहे, त कोशिशि करे सोचींदो त उन डिप्रेशन जे मर्ज़ में हले वेंदो। पर साईं जा असांखे इहो जुग आहे, असांजो इहो फ़र्ज़ु आहे त हर मरीज़ जी इहा आदत कयूं ऐं उनखां हाल वल वठूं ऐं जेको मरीज़ खां पुछणु वञे थो इहो बि बहितर अमल आहे। हुनजी अधु बीमारी ख़तमु थी वेंदी आहे। कोशिशि कयूं त जेके बीमार आहिनि, जेके बि परेशान हाल आहिनि, उन खां हाल वठणु हाल अहिवाल ज़रूरी आहे। ख़ासि करे उन मरीज़ खां जेको बीमार आहे, उन खां पुछणु बि तमामु ज़रूरी आहे।

जी साईं मुंहिंजा जेके दोस्त असांजो ॿिनि कलाकनि जो साथ ॾियनि था ऐं अॼोके दौर में वक़्तु कढी कंहिंजो साथ ॾियणु तमामु वॾी ॻाल्हि आहे ऐं दोस्तनि जी महिरबानी आहे जेके असांजो ॿिनि कलाकनि ताईं प्रोग्राम ॿुधनि पिया, लख कुर्ब आहिनि उन्हनि जा ऐं असांजे प्रोग्राम में शामिलु थियण लाइ पंहिंजा नाला लिखाइनि पिया, जंहिंमें यासमीन मलक आहे मीरपुर ख़ासि खां ऐं फ़क़ीर महरम जतोई आहे ॻोठु आगा ख़ान जतोई खां, आसफली चाचड़ वासफली बुगटी लाड़काणे खां, लुकमान मरी मोहम्मद अमीन मरी सतार मरी हाले पुटा स्टाप खां ऐं चनेसर बिहण आज़ाद बिहण मोरे खां, खालिक लाशारी मीरपुर ख़ासि खां, वकार अली जुणे जो इकरार अली जुणे जो अबरार अली जुणे जो ॻोठु ठुल जुणे जो खां ऐं क़ुर्बान अली ख़ासि केली आहे झंडो मरी खां, सोराबल सोराब मंगरियो फरहान मंगरियो नज़र मोहम्मद मंगरियो ॻोठु सचेरनो मंगरियो लॻे बकापुर खां, असदुल्ला जुणे जो तौक़ीर अहमद जुणे जो बेबी अबिया फातिमा ऐं अजवा फातिमा ॻोठु ठुल जुणे जे खां, सभिनी जी वॾी महिरबानी। नगमो कयूं पिया अव्हां जे नां ख़ूबसूरत गॾिजी ॿुधूं पिया।

0: खुशखबरी, क्या आप बालों के झड़ने से परेशान हैं? अब फिक्र छोड़िए, शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है बालों की जदीद और मौसर इलाज, एक्सोसोम्स एंड पीआरपी ट्रीटमेंट के साथ बालों का झड़ना कम करने में मददगार, कमजोर जड़ों को मजबूत बनाए, नए बालों की निशोनुमा में मदद दे, बालों को घना और सेहतमंद बनाए। घने मजबूत और खूबसूरत बालों के लिए आज ही राबता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद, थरी रोड मेहरापुर, 03003385569।
1: खुशखबरी, जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक सामू वधन बोटा पेट्रोल पंप कोटड़ी कबीर रोड मेहरापुर कराची इस्लामाबाद जो मशहूर डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमन एमए डीएचएमएस सिंध आरएचएमपी इस्लामाबाद होम्योपैथिक कंसल्टेंट एंड फैमिली फिजिशियन सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाबशाह हर अरबा खमीस जुमे छंछर आचर सूमर।

जी हा समय प्रोग्राम रोशन सुबह में मुस्तफ़ा आकाश की शायरी अवां ताईं पहुंचाईंदासीं। चंड उभरिया जॾहिं खां भितियुनि में वरी, चंड उभरिया जॾहिं खां भितियुनि में वरी, दीद अटकी असांजी दरियुनि में वरी, नेण जाॻिया त रोशन शहर थी पियो, ख़्याल फाटा वञी दिलि लॻिन में वरी, ही रुखियूं रक़्स थी मौज में झूमंदियूं, आण मुंहिंजा तसवर अखियुनि में वरी, प्यार खे पाप सम्झी कुठाऊं हिते, लाश उछले विया खजन में वरी, आऊं आकाश शायर न मरंदुसि कॾहिं, आऊं उभरी पियो ईंदुसि कतिन में वरी, चंड उभरी पिया जॾहिं खां भितियुनि में वरी, दीद अटकी असांजी दरियुनि में वरी।

जी हा समन प्रोग्राम जा आख़िरी लम्हा ऐं आख़िरी लम्हनि में अव्हां दोस्तनि जा कुझु नाला वठंदासीं। कोरी ॻोठ खां रांझन कोरी ऐं सखर खां अली गुल मीराणी, सजाद पालारी थाणे भोला खान खां ऐं मोहम्मद अज़ीज़ जरवार मीरपुर ख़ासि खां यादि कयो ऐं हाफिज़ असद लाइ चांडियो, हाफिज़ नवीद चांडियो ॻोठ मीराणी चंडन खां ऐं ॻोठ मीराणी चंडन खां ई मोहम्मद आलम चांडियो, इनायत ख़ासकेली झंडे मरी खां ऐं ग़ुलाम सरर बागाई मोरे खां, नूर सिन तुनियो बदीन खां, इक़बाल लाशारी ॻोठ सोनो खान लाशारी मीरपुर ख़ासि खां, ख़लील अहमद बि फेसबुक ते मैसेज कयो, ख़बर नाहे त ज़ात ऐं उन्हनि ॻोठु कहिड़ो आहे। बरकत जमाली बलोच जाफ़राबाद बलोचिस्तान खां यादि कयो, दोस्तनि जी वॾी महिरबानी। ख़ुशि नगमो अव्हां दोस्तनि नाम पिया कयूं।

जी आसमिन शैला गुल जे इन खूबसूरत कलाम ते प्रोग्राम रोशन सुबुह जो वक्त पहुंचे तो पंहिंजी पुॼाणी ते हयाती बख़ैर वहां सां मुलाकात ज़रूरु थींदी ऐं तेसीं ताईं पंहिंजे मेज़बान नेमत अलाह जूणे जो खे ॾींदा इजाज़त अलाह निगाहबान।

दहशतगर्दनि खे जहनम भेड़ो कयो वियो। मस्तोंग में कार्रवाई दौरान वधीक छह दहशतगर्द मारिजी विया। ॿिन्ही ज़िलनि में ऑपरेशन दौरान दहशतगर्दनि जा ॻुझा ठिकाणा पिण तबाह कया विया।

0: अलावा बढ़ता है की क्या हो कवर किया गया ना ब्लड है उसका वहां पर सारी चीजें इन्होंने 29 को बॉडी मिलती है ये 28 का बताए जा रहे हैं कभी कचरा वाला ढूंढ रहे हैं फाइनेंस पे ले आते हैं वो पढ़ा लिखा बच्चा था उसके बाद भी सोल्यूशन थे तो क्या करना है उसको बुलाया किसने हम बात कर रहे हैं मदर की डिजिटल करेंसी इन्वेस्टमेंट फाइनेंस ये हमें नहीं सुनना हम चाह रहे हैं कि मर्डर क्यों हुआ मर्डर किसने किया 100 किलोमीटर जाके क्यों सबकी करनी थी किसी अपने सर पे एडमिट करना था क्यों सामने नहीं आ रहा जब जाओ तो वहां पर हॉस्पिटल में अवेलेबल नहीं है वो गायब है कहां गायब है तो हमें तो बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही है मगर भाई कल तो किसी और को आप बिजनेसमैन को उठा के इस तरह मार दो
1: इसमें बहुत मेहनत की है और पूरा केस पेश कराची पुलिस कंप्लीट करेगी आपको सब कुछ बताएगी अभी तक जो मैं
2: मेडिकल बोर्ड में औचतो तब्दीलियत वापारी मीर रजा के वारसन पुट की कब्र कुशाई एम बी एयरपोर्ट मास्टरम कराने का इनकार कर छो नौजवान मीर रजा के वालिद मीर हुसैन चाहिए कब्र कुशाई से तैयार त रात की ऊंदाई में मेडिकल बोर्ड तब्दील कर मेडिकल बोर्ड के कब्र कुशाई की इजाजत न डी वी असो खदशो सही साबित थो मीर रजा के कत्ल में 62 मू मुलविस 8 रुकनी मेडिकल बोर्ड के 5 रुकनी वो डॉक्टर सुमैया सैयद का सवाए समूरन मेम्बर्स के तब्दील वो मियां साहब वेझो पुराने तकरार तां चांडिया ए मारफाणी बिरादरी के बिन धुरी में झेड़ो धनार कतल गोट रईस करम चांडियो में चांडिया ए मारफाणी बिरादरी के बिन धुरी में झेड़ो थे 12 बी धुर के माल फुरण की कोशिश दौरान मजम्मत धनार फिदा हुसैन चांडियो के कतल कयो वयो धुरी में तकरार तेज सिंध के मुख्तलिफ शहर में महंगाई खिलाफ जमायत इस्लामी जो एहतजाज फैज़गंज में जमायत इस्लामी पारा मेहरान हाईवे का रैली कढ़ी पका चांग में धरणो आयो

0: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
1: खुशखबरी, अपनी जिल्द को दे नई ताजगी, चमक और खूबसूरती हाइड्रा फेशियल के साथ। अब फिकर छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है। गहरी सफाई और फोरी ग्लो जिल्द को नरम और हाइड्रेट करे, सन डैमेज और रंगत बेहतर बनाने में मददगार। फेशियल रेजुविनेशन, साफ तरोताजगी और जवान नजर आने वाली जिल्द, जदीद टेक्नोलॉजी के साथ महफूज और मौसर स्किन केयर। नोट, खवातीन स्टाफ की निगरानी में की जाती है। आज ही अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवाएं। पता, रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नजद रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, थरी रोड, मेहरापुर। 0300-338-5569।
2: मेहरान आयरन स्टोर हालानी, होलसेल डिपो, अ नेम टू बी ट्रस्टेड।
3: सरिया, गार्डर, टीयर, एंगल, चैनल पट्टी, लोही दरवाजा, सिल्वर जा चौंक, सीमेंट, रेती, क्रेश, ऐं रंग वगैरह बाजार खां बारिया दस्तियाब आहिनि।
2: हाणे अचो मेहरान आयरन स्टोर, नज़्द बलोच पेट्रोल पंप, नेशनल हाईवे, हालाणी।
3: राब्ते लाइ प्रोप्राइटर गुलाम नबी मुगल, 0300-320-4372-0242-460100।
4: इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर। होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद ऐं बा अख्तियार इदारो इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर। नईं मोटरसाइकिल जी सेल कंपनीअ जे मुक़रर कयल रेट ते दस्तियाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया, जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनीअ जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद। इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन ज़रिए, जंहिंमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट, RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन ज़रिए कई वञे थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी ज़ेर निगरानी। इरशाद ऑटोस, हालाणी रोड, मेहरापुर। राब्ते जे लाइ 0302-018-00-003।
5: अस्सलाम वालेकुम अदा।
6: वालेकुम अस्सलाम अदा, छो परेशान आई?
5: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो, छा कजे?
6: अदा दुकान जी मशवरी कराई थई
5: न अदा।
2: यार आजकल शहरन तोड़े गोठन में जीए मेरापुर FM 94 ही हले थो। मो पंजो दुकान खोलियो तो FM मेरापुर ते पब्लिसिटी कराई। कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे।
5: मुझे दुकान जी बेड हलंदी?
6: हाँ दा, कारोबारी इश्तिहारात, आम इतला, मिलाद, मजलिस, सालगिरह जी मुबारक, मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी आए।
5: अदा जल्दी कर, मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा।
2: ऑफिस जी मेरापुर FM 94, नज़्द गर्ल्स डिग्री कॉलेज, हालाणी रोड, मेरापुर।
6: राब्ते लाए हाकिम अली जिसकानी,
7: 0301-399-2836।
8: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है। सुनते रहो GFM 94।

0: It's 11:15 a.m.
1: This time check is brought to you by White-ish Beauty Cream, Glowing Skin Jo Raaz, a product by Biocon International Pakistan. जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते खुशखबरी लेजर हेयर रिमूवल गैर जरूरी बालों को खत्म करने का जदीद हल अब फिक्र छोड़िए आपके शहर मेहरापुर में गिम्स अस्पताल गंबर्ड जिल्द के मशहूर डॉक्टर बशीर अहमद मेमन लेकर आए हैं चेहरे बाजू टांगे और पूरे जिस्म के गैर जरूरी बालों को खत्म करने के लिए महफूज और मुअस्सर ट्रीटमेंट बार बार वेक्स और शेविंग से निजात नरम साफ और खूबसूरत जिल्द कम वक्त बेहतरीन नतायज अब गैर जरूरी बालों की फिक्र खत्म लेजर हेयर रिमूवल के साथ आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद खरी रोड मेहरापुर 0300-338-5569
2: अपना शहर अपना घर मेहरापुर और मेहरापुर की आवाज GAFM 94

खुशखबरी, जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक सामू वधन बोटा पेट्रोल पंप कोटली कबीर रोड मेरा पर कराची इस्लामाबाद जो मशहूर डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमन एम ए डी एच एम एस सिंध आर एच एम पी इस्लामाबाद होम्योपैथिक कंसल्टेंट एंड फैमिली फिजिशियन सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाबशाह हर अरबा खमीस जुमे छंछर आचर।

0: वठनी पवंदी मायरे अमराज नक कन गलो पुरानो नज़लो निछो मथे जो सूर नजर जी कमजोरी कन जो वण कन जो सूर घट बुधण में अचण शुगर ब्लड प्रेशर दिल जा मर्ज फालिज खंघ टीबी मादे जी अल्सर मादे जी जलन दिली जो वधण जिगर जा मर्ज हेपेटाइटिस बी सी गुर्दे जी पथरी मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जी कामयाब इलाज कयो वञे थो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी खारिश फट फुरड़ियों बारन में कद जो न वधण मर्दन ऐं औरतुन में वज़न जो न वधण उन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वञे थो राब्ते लाइ 0301-9196-851
1: खूबसूरती का असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम इसमें मौजूद विटामिन ई बीड्स और जदीद माइक्रो बीड्स फॉर्मूला आपकी जिल्द को बनाए निखरी और चमकदार सिर्फ दो दिन में डार्क स्पॉट्स को करे फेड और दे कुदरती असली ग्लो डी स्किन ब्यूटी क्रीम असली ग्लो हर दिन का शो
2: खुशखबरी क्या आप बालों के झड़ने से परेशान हैं अब फिक्र छोड़िए शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है बालों की जदीद और मौसर इलाज एक्सोसोम्स एंड पीआरपी ट्रीटमेंट के साथ बालों का झड़ना कम करने में मददगार कमजोर जड़ों को मजबूत बनाए नए बालों की निशोनुमा में मदद दे बालों को घना और सेहतमंद बनाए घने मजबूत और खूबसूरत बालों के लिए आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद थरी रोड मेहरापुर 03003385 69

0: खुशखबरी, क्या आप बालों के झड़ने से परेशान हैं? अब फिक्र छोड़िए, शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है बालों की जदीद और मौसर इलाज, एक्सोसोम्स एंड पीआरपी ट्रीटमेंट के साथ बालों का झड़ना कम करने में मददगार, कमजोर जड़ों को मजबूत बनाए, नए बालों की निशोनुमा में मदद दे, बालों को घना और सेहतमंद बनाए। घने मजबूत और खूबसूरत बालों के लिए आज ही राबता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद, थरी रोड मेहरापुर, 03003385569। खुशखबरी, लेजर हेयर रिमूवल, गैर जरूरी बालों को खत्म करने का जदीद हल। अब फिक्र छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में गिम्स अस्पताल गंबर्ट जिल्द के मशहूर डॉक्टर बशीर अहमद मेमन लेकर आए हैं चेहरे, बाजू, टांगे और पूरे जिस्म के गैर जरूरी बालों को खत्म करने के लिए महफूज और मौसर ट्रीटमेंट, बार बार वेक्स और शेविंग से निजात, नरम, साफ और खूबसूरत जिल्द, कम वक्त बेहतरीन नतायज। अब गैर जरूरी बालों की फिक्र खत्म लेजर हेयर रिमूवल के साथ, आज ही राबता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद, थरी रोड मेहरापुर, 03003385569। खुशखबरी, अपनी जिल्द को दे नई ताजगी, चमक और खूबसूरती हाइड्रा फेशियल के साथ। अब फिक्र छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है गहरी सफाई और फोरी ग्लो, जिल्द को नरम और हाइड्रेट करे, सन डैमेज और रंगत बेहतर बनाने में मददगार, फेशियल रेजुविनेशन, साफ तरोताजगी और जवान नजर आने वाली जिल्द, जदीद टेक्नोलॉजी के साथ महफूज और मौसर स्किन केयर। नोट, खवातीन स्टाफ की निगरानी में की जाती है। आज ही अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवाएं। पता, रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद, थरी रोड मेहरापुर, 03003385569।
1: आशिक होंडा शोरूम मेहरापुर, एटलस होंडा मोटरसाइकिल चूपर एटमाट, अइमा अख्तियार 3S डीलर, आशिक होंडा मोटर्स मेहरापुर, जिते नई मोटरसाइकिल जी सेल, कंपनिया जे मुकरर केल रेट ते दस्तियाब आहे, सर्विस सेंटर, एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर, सर्विस एरिया, जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे, होंडा कंपनिया जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद, आशिक होंडा मोटर्स ते पंहिंजे होंडा मोटरसाइकिल जी ट्यूनिंग करायो, कंप्यूटराइज जैपनी स्टेचिंग मशीन जे जरिए, जिन्हें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर, फ्यूल एडजस्टमेंट, आरपीएम जी एडजस्टमेंट, कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वन्य थी, होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जे जेर निगरानी, आशिक होंडा मोटर्स, एड्रेस इंडस बाईपास नस्त रेलवे लाइन मेहरापुर, राप्ती जिलाई, आसिम हुसैन आराई, 03073592120।
0: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा, कुरान के समझी बुधंदा रहो। डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:55 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते।
2: अपना शहर अपना घर मेहरापुर, और मेहरापुर की आवाज GAFM 94।

ॻाल्हियूं कयूं वेंदियूं खिते मयामुन जे क़याम लाइ थींदड़ कोशिशुनि जो बि जाइज़ो वरितो वेंदो। सिक्योरिटी फोर्सिस जा के पी जे मुख़्तलिफ़ इलाइक़नि में ऑपरेशन, 10 ख़ारजी दहशतगर्द मारिजी विया। SPR मौजूब ॾखण वज़ीरिस्तान जे इलाइक़े आज़म वक्स में ऑपरेशन कयो वियो। सिक्योरिटी फोर्सिस जी चेक पोस्ट ते हमले में मुलविस 8 ख़ारजी दहशतगर्द मारिजी विया। देर में कार्रवाई दौरान ॿिनि दहशतगर्दनि खे जहनम भेड़ो कयो वियो। सदर आसिफ ज़रदारी, वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ़ ऐं ॿियनि पारां फोर्सिस खे कामयाब कार्रवाई ते भेटा पेश। शहबाज़ शरीफ़ चयो त क़ौम खे पाक फ़ौज सलाहियतनि ऐं क़ुर्बानीनि ते फ़ख़ुर आहे। मेडिकल बोर्ड में तब्दीलीअ ते वारसन जे एतराज़ बाद वापारी मीर रज़ा जी क़बर कुशाई मुल्तवी। वकील जिब्रान नासिर चयो आहे त दिल ते पत्थर रखी क़बर कुशाई जो फ़ैसिलो कयो हो। राति जी ऊंदाई में फ़ैसिलो तब्दील कयो वियो। IG ते भरोसो नाहे। मीर रज़ा जे वालिद मीर हसन चयो आहे त कुझु बि थी वञे पोइ ते न हटंदसि। चवनि था 3 करोड़नि जो मसलो हो। ॿुधायो वञे कंहिंखे बचाइण जी कोशिश थी रही आहे। जंहिं बोर्ड ते असांखे एतमाद आहे हुन खां ई पोस्टमार्टम करायो वञे। मिया साहब वेझो पुराणे तकरार तां चांडिया ऐं मारफाणी बिरादरी जे ॿिनि धुरियुनि में झेड़ो। धनार कतल ॻोठ रईस करम चांडियो में चांडिया ऐं मारफाणी बिरादरी जे ॿिनि धुरियुनि में झेड़ो थियो। हिकु धुर पारां ॿी धुर जे माल फुरण जी कोशिश दौरान मज़ाहमत ते धनार फिदा हुसैन चांडियो खे क़तल कयो वियो। धुरियुनि में तकरार तेज़।

पीर जो गोठ भरसा बिन धुरिन में फसल जी भेल ता झेड़ो एक जणो कतल गोठ उमर कानर में कानर बिरादरी जे बिन धुरिन में झेड़ो थे फायरिंग दौरान गोलियों लगन जे नतीजे में अब्दुल मजीद कतल थी वयो एक जणे जे कतल बाद धुरिन में तकरार तेज थी वयो।

कोटड़ी में मला बिरादरी जे बिन धुरिन में थियल झेड़े जो जख्मी फोत फारसन जो लाश रखी धरणो जिम्मेवारन खिलाफ कार्रवाई जो मुतालबो चार ॾींहं मला बिरादरी जे बिन धुरिन में झेड़े दौरान जख्मी थियल इब्राहिम मला फोत थी वियो फोती नौजवान जे वारिस औरतन ऐं मर्दन कोटड़ी थाणे आॾो लाश रखी धरणो हयो जवाबदार गिरफ़्तार करण जो मुतालबो।

कंदकोट में कौमी अवामी तहरीक की रैली सिंध में सूबन के क्याम की मुखालफत अगवाण तो सिंध में नवन सूबन वारा बयान मजम्मत जोगा सिंध सदिन का एक हुई एक ही रांदी कंखे बेसिंध टोड़न न डींदी नवन सूबन वो फैसलो वापस वी नफरत पखेड़ बंद कई वे सिंध के मुख्तलिफ शहर में महंगाई खिलाफ जमायत इस्लामी जो एहतजाज फैज़गंज में जमायत इस्लामी पारा मेहरान हाईवे का रैली कढ़ी पका चांग में धरणो आयो।

0: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
1: इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरापुर, होंडा मोटरसाइकिल जोधपुर एतमाद आई बा अख्तियार इदारो। इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरापुर, नईन मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कर रेट ते दस्तयाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया, जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद। इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन जरिए, जंहिंमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट RPMG एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वनी थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी जेर निगरानी। इरशाद ऑटोस हालानी रोड मेहरापुर, राब्ते जे लाइ 0320180003।
2: खुशखबरी, अपनी जिल्द को दे नई ताजगी, चमक और खूबसूरती हाइड्रा फेशियल के साथ। अब फिकर छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है। गहरी सफाई और फोरी ग्लो जिल्द को नरम और हाइड्रेट करे, सन डैमेज और रंगत बेहतर बनाने में मददगार। फेशियल रेजुविनेशन, साफ तरोताजगी और जवान नजर आने वाली जिल्द जदीद टेक्नोलॉजी के साथ, महफूज और मौसर स्किन केयर। नोट, खवातीन स्टाफ की निगरानी में की जाती है। आज ही अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवाएं। पता, रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नजद रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, थरी रोड, मेहरापुर। 0300338569।

0: कॉलम में मौजूद आहिन फौजी बायरन लाए खुसूसी रियायत हुंदी राबते लाए फौजी अब्दुल करीम 0301-54-4456 ऐं तौकीर अहमद 0306-1623-793।
1: अस्सलाम वालेकुम अदा।
2: वालेकुम अस्सलाम अदा, छो परेशान आई?
1: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो, छा कजे?
2: अदा दुकान जी मशवरी कराई थई
1: न अदा।
0: यार आज कल शहरन तोड़े गोठन में जी मेरा पर FM 94 ही हले थो। मु पंजो दुकान खोलियो तो FM मेरा पर ते पब्लिसिटी कराई। कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे।
1: मुझे दुकान जी बेड हलंदी?
2: हां दा, कारोबारी इश्तिहारात आम इतला मिलाद मजलिस सालगिरह जी मुबारक मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी।
1: अदा जल्दी कर मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा।
0: ऑफिस जी मेरापुर FM 94 नर्थ गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मेरापुर।
2: राबते लाए हाकिम अली जिस्कानी
3: 0301-399-2836।
4: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है, सुनते रहो जी FM 94।

0: It's 12:15 p.m.
1: This time check is brought to you by
2: D Skin Beauty Cream. Asli Glow Har Diya Josho. A product by Biocon International Pakistan. खुशखबरी, लेजर हेयर रिमूवल गैर जरूरी बालों को खत्म करने का जदीद हल। अब फिक्र छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में गिम्स अस्पताल गंबर्ट जिल्द के मशहूर डॉक्टर बशीर अहमद मेमन लेकर आए हैं चेहरे, बाजू, टांगे और पूरे जिस्म के गैर जरूरी बालों को खत्म करने के लिए महफूज और मौसर ट्रीटमेंट, बार बार वेक्स और शेविंग से निजात, नरम, साफ और खूबसूरत जिल्द, कम वक्त बेहतरीन नतायज। अब गैर जरूरी बालों की फिक्र खत्म लेजर हेयर रिमूवल के साथ। आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नजद रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, खरी रोड, मेहरापुर, 0300-338-5569।
3: अपना शहर, अपना घर, मेहरापुर, और मेहरापुर की आवाज GAFM 94।

0: खुशखबरी, क्या आप बालों के झड़ने से परेशान हैं? अब फिक्र छोड़िए, शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है बालों की जदीद और मौसर इलाज, एक्सोसोम्स एंड पीआरपी ट्रीटमेंट के साथ बालों का झड़ना कम करने में मददगार, कमजोर जड़ों को मजबूत बनाए, नए बालों की निशोनुमा में मदद दे, बालों को घना और सेहतमंद बनाए। घने मजबूत और खूबसूरत बालों के लिए आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद, खरी रोड मेहरापुर, 03003385569।
1: रोशनी का काफिला मंजिल की तरफ गामजन, मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर, शानदार तालीमी इमारत, प्रोफेसर कुर्बान अली मेमन, एयर कंडीशन्ड एकेडमिक ब्लॉक का इनेकाद, मेहनती मुशाक और तजुर्बेकार तदरीसी अमला, सरसब्ज बागीचा, बेहतरीन फर्नीचर, शानदार कंप्यूटर, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी की लैब्स, ऑडियो और विजुअल लेक्चर सिस्टम की सहूलत, केमिस्ट्री फिजिक्स बायोलॉजी रियाजी और इंग्लिश पर खुसूसी तवज्जो, एंट्री टेस्ट के लिए मेडिकल और इंजीनियरिंग में काबिल तहसीन नतायज, खेलों का मैदान और वहां मुनक्किद होने वाले मुकाबले, तहरीर तकरीर और जहनी आजमाइश के मुकाबले, स्टडी टूर्स, अपनी आँखों के नूर बच्चियों और प्यारे बेटों की मयारी तालीम तरबियत के लिए आज ही मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर का विजिट करें। मजीद राबते के लिए डॉक्टर अल्ताफ हुसैन मेमन, मैनेजिंग डायरेक्टर मजहर स्कूल सिस्टम, 03000072734। निसार अहमद मेमन, प्रिंसिपल मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर, 03013865453।
2: मेहरान आयरन स्टोर हालानी, होलसेल डिपो, अ नेम टू बी ट्रस्टेड,
3: सरिया गार्डर टीए एंगल चैनल पट्टी लोही दरवाजा सिल्वर जा चौंग सीमेंट रेती क्रेश आई रंग वगैरह बाजार का बारियर दस्तयाब आई।
2: हाँ यचो मेहरान आयरन स्टोर नज़्द बलोच पेट्रोल पंप नेशनल हाईवे हालानी।
3: राब्ते लाए प्रोप्राइटर गुलाम नबी मुगल, 03003204372
4: खूबसूरती जो असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम हिन में मौजूद विटामिन ई बीड्स आई जदीद माइक्रो बीड्स फार्मूलो अवां जी स्किन के बनाए निखरी आई चमकदार सिर्फ बिंदीहन में डार्क स्पॉट्स के करे खत्म आई दिए कुदरती असली ग्लो डी स्किन ब्यूटी क्रीम असली ग्लो हर डी जो शो अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
5: खुशखबरी, जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक सामू वधन बोटा पेट्रोल पंप कोटड़ी कबीर रोड मेहरापुर कराची इस्लामाबाद जो मशहूर डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमन एमए डीएचएमएस सिंध आरएचएमबी इस्लामाबाद होम्योपैथिक कंसल्टेंट एंड फैमिली फिजिशियन सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाबशाह हर अरबा खमीस जुमे छंछर आचर।

0: मरीजन के दवा स्टोर दा वठनी पौंदी माहिर अमराज नक कन गलो पुरानो नज़लो निछो मथे जो सूर नजर जी कमजोरी कन जो वण कन जो सूर घट बुधण में अचण शुगर ब्लड प्रेशर दिल जा मर्ज फालिज खंघ टीबी मादे जी अल्सर मादे जी जलन दिली जो वधण जिगर जा मर्ज हेपेटाइटिस बी सी गुर्दे जी पथरी मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जे कामयाब इलाज कयो वञे थो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी खारिश फट फुरड़ियों बारन में कद जो न वधण मर्दन ऐं औरतुन में वजन जो न वधण उन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वञे थो राब्ते लाइ 0301-9196-851
1: अस्सलाम वालेकुम अदा
2: वालेकुम अस्सलाम अदा छो परेशान आई
1: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो छा कजे
2: अदा दुकान जी मशवरी कराई थई
1: न अदा
0: यार आज कल शहरन तोड़े गोठन में जी मेरापुर एफएम 94 ही हले थो मु पंजो दुकान खोलियो त एफएम मेरापुर ते पब्लिसिटी कराई कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे
1: मुजे दुकान जी बेड हलंदी
2: हां दा कारोबारी इश्तिहारात आम इतला मिलाद मजलिस सालगिरह जी मुबारक मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी
1: अदा जल्दी कर मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा
0: ऑफिस जी मेरापुर एफएम 94 नज गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मेरापुर
2: राबते लाए हाकिम अली जिसकानी
3: 0301-399-2836
4: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है सुनते रहो जी एफएम 94

अगर कहीं भी दोस्त के पोस्ट जरिए मेमोरी कार्ड घुराइण हो उन रबो कह उन अलावा असा कई बारी के मेमोरी कार्ड में तब्दील कर दीदा।

0: आप सुनेंगे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
1: दावत थे शहबाज शरीफ ए फील्ड मार्शल आसिम मुनीर जदा में मौजूद तुर्किया जो सदर रजब तैयब एर्दोगान भी अज सऊदी अरब पहुंचन तो टिन्हीं मुल्क सरप्राइज इजलास में खिते की सूरत हाल समेत बिन तरफन लागापन से गाल वेंदू खिते में अमुन के क्याम लायदड़ कोशिशन जो भी जायजो वरतो वेंदो। सऊदी अरब के दौरे से मौजूद वजीर आजम शहबाज शरीफ फील्ड मार्शल एमएन मके शरीफ में उम्र अदा कयो। पाकिस्तानी वफद कप्तुला जी ज्यारत भी कई। उम्र अदा करण बाद वजीर आजम शहबाज शरीफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ए बेन मेंबर्स मुल्क ए कौम की तरक्की ए मुसलमान की सलामती लाए दुआ भी घुरी।

सिक्योरिटी फोर्सेस जा केवी जे में ऑपरेशन 10 खारजी दहशतगर्द मारजी वया। एसपीआर मौजूद दखण वजीरिस्तान जे इलाके आजम बख्स में ऑपरेशन कयो वयो। सिक्योरिटी फोर्सेस जी चेक पोस्ट ते हमले में मुलविस 8 खारजी दहशतगर्द मारजी वया। देर सां कार्रवाई दौरान बिन दहशतगर्दनि खे जहनुम भेड़ो कयो वयो। सदर आसिफ ज़रदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ऐं ॿियनि पारां फोर्सेस खे कामयाब कार्रवाई ते भेटा पेश। शहबाज शरीफ चयो त क़ौम खे पाक फ़ौज सलाहियतनि ऐं क़ुर्बानियुनि ते फ़ख़्रु आहे। मेडिकल बोर्ड में तब्दीलीअ ते वारसनि जे एतिराज़ बाद वापारी मीर रज़ा जी क़बर कुशाई मुलतवी। वकील जबरान नासिर चयो आहे त दिल ते पथर रखी क़बर कुशाई जो फ़ैसिलो कयो हो। राति जी ऊंदाही में फ़ैसिलो तब्दील कयो वियो। आईजी ते भरोसो नाहे। मीर रज़ा जे वालिद मीर हसन चयो आहे त कुझु बि थी वञे पोइ ते न हटंदसि। चवनि था 3 करोड़नि जो मसलो हो। ॿुधायो वञे कंहिंखे बचाइण जी कोशिश थी रही आहे। जंहिं बोर्ड ते असां खे एतमाद आहे उन खां ई पोस्टमार्टम करायो वञे। मियां साहब वेझो हथियारबंदनि जो ॻोठ ते हमिलो। हिकु ॼणो क़तल। ॻोठु रईस करम चांडियो ते हथियारबंदनि हमिलो कयो। फायरिंग जे नतीजे में फिदा हुसैन चांडियो मारिजी वियो। मक़तूल जे वारसनि मूजिबि मारफाणी धुर जे हथियारबंदनि ॻोठ ते हमिलो करे नौजवान खे क़तल कयो आहे ऐं मेहू बि काए विया आहिनि। नोटिस वरितो वञे। पुलिस चयो आहे त वाकियो चांडिया ऐं मारफाणी बिरादरी जे ॿिनि धुरियुनि में हलंदड़ तकरार जो नतीजो आहे। पीर जो ॻोठु भरिसां कानर बिरादरी जे ॿिनि धुरियुनि में फसल जी भेर सां झेड़ो। हिकु ॼणो क़तल। ॻोठु उमर कानर में कानर बिरादरी जे ॿिनि धुरियुनि में झेड़ो थियो। फायरिंग दौरान गोलियूं लॻण जे नतीजे में अब्दुल मजीद कानर क़तल थी वियो। हिकु ॼणे जे क़तल बाद धुरियुनि में तकरार तेज़ थी वियो।

0: कोटड़ी में बाला बिरादरी के बिन धुरी में थियल झेड़े जो जख्मी फोत वारसन जो लाश रखी धरणो जिम्मेवार खिलाफ कार्रवाई जो मुतालबो चार ढी अग मला बिरादरी के बिन धुरी में झेड़े दौरान जख्मी थियल इब्राहिम मला फोत थो हो फोती नौजवान के वारिस औरतन ए मर्दन कोटड़ी थाने आडो लाश रखी धरणो हो जवाबदार गिरफ्तार करण जो मुतालबो कंदकोट में कौमी अवामी तहरीक की रैली सिंध में सूबन के क्याम के मुखालफत अगवाणन सिंध में नवन सूबन वारा बयान मज़म्मत जोगा सिंध सदियों का एक हुई एक ही रांदी कें भी सिंध टोड़न न डींदासी नवन सूबन वारो फैसलो वापस वठी नफरत पखेड़न बंद कई वे सिंध के मुख्तलिफ शहर में महंगाई खिलाफ जमायत इस्लामी जो एहतजाज फैज़गंज में जमायत इस्लामी रैली कड़ी धरणो आयो मिठी में भी जमायत इस्लामी जो एहतजाज
1: आप सुन रहे थे जीएफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज़।

0: ऐं कालम में मौजूद आहिनि। फौजी ॿाहिरनि लाइ ख़ुसूसी रिआयत हूंदी। राब्ते लाइ फौजी अब्दुल करीम 0301-54-4456 ऐं तौकीर अहमद 0306-16-23-793।
1: इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर। होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद ऐं बा अख़्तियार इदारो इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर। नईं मोटरसाइकिल जी सेल कंपनीअ जे मुक़रर कयल रेट ते दस्तियाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर, जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनीअ जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स ख़ुसूसी रियायत ते मौजूद। इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन ज़रिए, जंहिं में मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट, RPMG एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन ज़रिए कई वञे थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी ज़ेर निगरानी। इरशाद ऑटोस, हालाणी रोड, मेहरापुर। राब्ते जे लाइ 0320180003।
2: खुशखबरी, अपनी जिल्द को दे नई ताजगी, चमक और खूबसूरती हाइड्रा फेशियल के साथ। अब फिकर छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है। गहरी सफाई और फोरी ग्लो जिल्द को नरम और हाइड्रेट करे, सन डैमेज और रंगत बेहतर बनाने में मददगार। फेशियल रेजुविनेशन, साफ तरोताजगी और जवान नजर आने वाली जिल्द, जदीद टेक्नोलॉजी के साथ महफूज और मौसर स्किन केयर। नोट, खवातीन स्टाफ की निगरानी में की जाती है। आज ही अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवाएं। पता, रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नजद रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, थरी रोड, मेहरापुर। 0300-338-5569।
1: आशिक होंडा शोरूम मेहरापुर, एटलस होंडा मोटरसाइकिल चौपर एतमाद, आई बा अख्तियार 3S डीलर, आशिक होंडा मोटर्स मेहरापुर, जिते नई मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कयल रेट ते दस्तियाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर। सर्विस एरिया, जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद। आशिक होंडा मोटर्स ते पंहिंजे होंडा मोटरसाइकिल जी ट्यूनिंग करायो कंप्यूटराइज जैपनी स्टेचिंग मशीन जे ज़रिए, जंहिंमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट, RPMG एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन ज़रिए कई वञे थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जे ज़ेर निगरानी। आशिक होंडा मोटर्स, एड्रेस इंडस बाईपास, नज़्द रेलवे लाइन, मेहरापुर। राब्ते जे लाइ आसिम हुसैन आराई 0307-359-2120।
3: अस्सलाम वालेकुम अदा।
4: वालेकुम अस्सलाम अदा, छो परेशान आई?
3: अदा नओ दुकान खोलियो अथम पर हले ही न तो, छा कजे?
4: अदा दुकान जी मशहूरी कराई अथई?
3: न अदा
5: यार, अॼुकल्ह शहरनि तोड़े गोठनि में जीअं मेरापुर FM 94 ई हले थो, मूं पंहिंजो दुकान खोलियो त FM मेरापुर ते पब्लिसिटी कराई। कारोबार अहिड़ो कामयाब हुयो जो एड बंदि कराइण ते दिल्ली नथी चवे।
3: मुंहिंजे दुकान जी भेट हलंदी?
4: हा अदा, कारोबारी इश्तिहारात, आम इतला, मीलाद, मजलिस, सालगिरह जी मुबारक, मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइज़िंग हलंदी आहे।
3: अदा जल्दी कर, मूंखे मुंहिंजी एड्रेस ॿुधायो।
5: ऑफिस जी मेरापुर FM 94, नज़्द गर्ल्स डिग्री कॉलेज, हालाणी रोड, मेरापुर।
4: राब्ते लाइ हाकिम अली जिस्कानी
6: 0301-399-2836।
7: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है। सुनते रहो जी FM 94।

0: It's 1:15 p.m.
1: This time check is brought to you by White Ish Beauty Cream, Glowing Skin Jo Raaz, a product by Biocon International Pakistan. खुशखबरी, लेजर हेयर रिमूवल गैर जरूरी बालों को खत्म करने का जदीद हल। अब फिक्र छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में गिम्स अस्पताल गंबर्ट जिल्द के मशहूर डॉक्टर बशीर अहमद मेमन लेकर आए हैं चेहरे, बाजू, टांगे और पूरे जिस्म के गैर जरूरी बालों को खत्म करने के लिए महफूज और मौसर ट्रीटमेंट, बार बार वेक्स और शेविंग से निजात, नरम, साफ और खूबसूरत जिल्द, कम वक्त बेहतरीन नतायज। अब गैर जरूरी बालों की फिक्र खत्म लेजर हेयर रिमूवल के साथ। आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, खरी रोड, मेहरापुर, 0300-338-5569।
2: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है। सुनते रहो जी एफ एम 94।

0: माशाल्लाह।
1: वो मेरा नबी, मेरा नबी, मेरा नबी है, वो मेरा नबी है मुज़म्मिल।

खुशखबरी, क्या आप बालों के झड़ने से परेशान हैं? अब फिक्र छोड़िए, शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है बालों की जदीद और मौसर इलाज, एक्सोसोम्स एंड पीआरपी ट्रीटमेंट के साथ बालों का झड़ना कम करने में मददगार, कमजोर जड़ों को मजबूत बनाए, नए बालों की निशोनुमा में मदद दे, बालों को घना और सेहतमंद बनाए। घने मजबूत और खूबसूरत बालों के लिए आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद, खरी रोड मेहरापुर, 03003385 69।

0: मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जे कामयाब इलाज कयो वने तो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी खारिश फट फुरड़ियों बारन में कद जो न वधण मर्दन ऐं औरतुन में वज़न जो न वधण उन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वञे थो। राब्ते लाइ 0301-2196-851।
1: अस्सलाम वालेकुम अदा।
2: वालेकुम अस्सलाम अदा, छो परेशान आई?
1: अदा नओ दुकान खोलियो अथम पर हले ही न तो, छा कजे?
2: अदा दुकान जी मशवरी कराई अथई?
1: न अदा।
3: यार आजकल शहरन तोड़े गोठन में जी मेरापुर FM 94 ही हले थो। मु पंजो दुकान खोलियो तो FM मेरापुर ते पब्लिसिटी कराई। कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली नथी चवे।
1: मुझे दुकान जी बेड हलंदी?
2: हां दा, कारोबारी इश्तिहारात आम इतला मिलाद मजलिस सालगिरह जी मुबारक मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी।
1: अदा जल्दी कर मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा।
3: ऑफिस जी मेरापुर FM 94 नर्द गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मेरापुर।
2: राबते लाए हाकिम अली जिसकानी
4: 0301-399-2836।
5: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है, सुनते रहो जी FM 94।

सरबराह इजलास अज थींदो टिनी मुल्कनि पारां गॾियल दिफ़ाई मुआहिदे ते सहियूं कयूं वेंदियूं। सऊदी वली अहद जी दावत ते वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ऐं फील्ड मार्शल आसिम मुनीर जद्दा में मौजूदु। तुर्किया जो सदर रजब तैयब एर्दोगान बि अॼु सऊदी अरब पहुचंदो। टे मुल्की सरबराही इजलास में खिते जी सूरतहाल समेत ॿिनि तरफ़नि लाॻापनि ते ॻाल्हियूं कयूं वेंदियूं। खिते में अमुन जे क़याम लाइ थींदड़ कोशिशनि जो बि जाइज़ो वरितो वेंदो। सऊदी अरब जे दौरे ते मौजूद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ फील्ड मार्शल ऐं ॿियनि मके शरीफ में उमिरो अदा कयो। पाकिस्तानी वफ़द अब्दुल्ला जी ज़ियारत बि कई। उमिरो अदा करण बाद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ फील्ड मार्शल सैद आसिम मुनीर ऐं ॿियनि मेंबर्स मुल्क ऐं क़ौम जी तरक़ी ऐं मुस्लमाननि जी सलामतीअ लाइ दुआ बि घुरी। अमेरिका हथियारनि में घटिताई वारी ख़बर मीडिया ताईं कीअं पहुती आहे? अमेरिकी सदर ट्रंप जांच जो हुकुम ॾेई छॾियो। अमेरिकी अख़बार वॉल स्ट्रीट जर्नल जी रिपोर्ट मूजिबि हथियारनि जे ज़खीरे में घटिताई वारियूं ख़बरूं लीक थियण ते सदर ट्रंप परेशान आहे। काबीना इजलास दौरान ऐं वेझनि साथियुनि सां बि ट्रंप नाराज़गी ज़ाहिर कई आहे। अमेरिका वधीक ड्रामा करण बदिरां हक़ीक़तूं तस्लीम कंदे कयल वाइदा पाड़े। ईरानी पार्लियामेंट जे स्पीकर मोहम्मद बाकिर कालिबाफ़ चयो आहे त धमकियुनि खां डिॼण वारा न आहियूं। अमेरिका खे हाणे हक़ीक़तूं तस्लीम करणु घुर्जनि जंग बंदी बाबति कयल वाइदा पाड़े। सिक्योरिटी फोर्सिस जा के पी जे मुख़्तलिफ़ इलाइक़नि में ऑपरेशन। 10 ख़ारजी दहशतगर्द मारिजी विया। एस पी आर मूजिबि ॾखण वज़ीरिस्तान जे इलाइक़े आज़म वर्क्स में ऑपरेशन कयो वियो। सिक्योरिटी फोर्सिस जी चेक पोस्ट ते हमले में मुलविस 8 ख़ारजी दहशतगर्द मारिजी विया। देरि में कार्रवाई दौरान ॿिनि दहशतगर्दनि खे जहनम भेड़ो कयो वियो। सदर आसिफ ज़रदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ़ ऐं ॿियनि पारां फोर्सिस खे कामयाब कार्रवाई ते भेटा पेश। शहबाज शरीफ़ चयो त क़ौम खे पाक फ़ौज सलाहियतनि ऐं कुर्बानियुनि ते फ़ख्र आहे। मीडिया मेडिकल बोर्ड में तब्दीलीअ ते वारसनि जे एतिराज़ बाद वापारी मीर रज़ा जी क़बरकुशाई मुल्तवी। वकील जबरान नासिर चयो आहे त दिलि ते पथर रखी क़बरकुशाई जो फ़ैसिलो कयो हो। राति जी ऊंदाही में फ़ैसिलो तब्दील कयो वियो आहे। आई जी ते भरोसो नाहे। मीर रज़ा जे वालिद मीर हसन चयो आहे त कुझु बि थी वञे पोइते न हटंदसि। चवनि था 3 करोड़नि जो मसलो आहे। ॿुधायो वञे कंहिंखे बचाइण जी कोशिश थी रही आहे। जंहिं बोर्ड ते असांखे एतमाद आहे उन खां ई पोस्टमार्टम करायो वञे। मियां साहब वेझो हथियारबंदनि जो ॻोठ ते हमिलो। हिकु ॼणो क़तल। ॻोठु रईस करम चांडियो ते हथियारबंदनि हमिलो कयो। फायरिंग जे नतीजे में फिदा हुसैन चांडियो मारिजी वियो। मक़तूल जे वारसनि मूजिबि मारफाणी धुर जे हथियारबंदनि ॻोठ ते हमिलो करे नौजवान खे क़तल कयो आहे ऐं मेहूं बि काए विया आहिनि। नोटिस वरितो वञे। पुलिस चयो आहे त वाकियो चांडिया ऐं मारफाणी बिरादरी जे ॿिनि धुरियुनि में हलंदड़ तकरार जो नतीजो आहे। पीर जो ॻोठु भरिसां कानर बिरादरी में फसल जी भेल तां झेड़ो। हिकु ॼणो क़तल। ॻोठु उमर कानर में कानर बिरादरी जे ॿिनि धुरियुनि में झेड़ो थियो। फायरिंग दौरान गोलियूं लॻण जे नतीजे में अब्दुल मजीद कानर क़तल थी वियो। हिकु ॼणे जे क़तल बाद धुरियुनि में तकरार तेज़ थी वियो। मेहड़ भरिसां 3 ॿार पाणीअ जी खॾ में ॿुॾी विया। ॿिनि खे बचायो वियो। हिकु ॿार ॿुॾी फोत थी वियो आहे। लाश हथ कयो वियो आहे। ॻोठु ज़ोरामाची में 3 ॿार ॿुॾी विया। 5 वरियनि जी सभा जो लाश हथ कयो वियो। सिंध हाई कोर्ट सखर बेंच में नौजवान खलील शर जी मुबैन अगवा ख़िलाफ़ दाख़िल दरख़्वास्त ते ॿुधणी। एस एस पी नौशेरो फ़ेरोज़ रोहल खोसो अदालत में पेश। महीने जी मोहलत ॾियण जी इस्तदा। अदालत एस एस पी खैरपुर अमीर सऊद मंगसीअ खे बि ईंदड़ ॿुधणीअ ते तलब करे वरितो। दरख़्वास्त गुज़ार मूजिब खलील शहर खे मज़दूरी बहाने घुराए अगवा कयो वियो हो। कराची में गैर कानूनी फॉरेन एक्सचेंज ऐं हवाला हंडी में मुलविस 3 जवाबदार गिरफ़्तार। गुलशन इकबाल में परडे॒ही करंसी जी ख़रीद ऐं विकरे जे इल्ज़ाम हेठि सैद आतिफ़ अब्बास ज़ैदीअ खे गिरफ़्तार कयो वियो। एफ आई ए तर्जुमान मूजिबि जवाबदार वटां 23,000 डॉलर, 45,000 रियाल, 1,11 करोड़ ईरानी रियाल ऐं 33 लख रुपयनि समेत ॿियो सामान बेहद कयो वियो। बहादुराबाद में कार्रवाई दौरान इल्ताफ थींदी ऐं संदसि साथी खे गिरफ़्तार करे कब्ज़े मां 1 करोड़ रुपया हथ कया विया।

0: जे ॿिनि धुरियुनि में थियल झेड़े जो ज़ख़्मी फ़ौत वारसनि जो लाश रखी धरणो ज़िमेवारनि ख़िलाफ़ कार्रवाई जो मुतालबो चार ॾींहं अॻु मला बिरादरी जे ॿिनि धुरियुनि में झेड़े दौरान ज़ख़्मी थियल इब्राहिम मला फ़ौती हो फ़ौती नौजवान जे वारिस औरतनि ऐं मर्दनि कोटली थाणे आॾो लाश रखी धरणो हयो जवाबदार गिरफ़्तार करण जो मुतालबो कंदकोट में क़ौमी अवामी तहरीक जी रैली सिंध में सूबनि जे क़याम जी मुख़ालफ़त अॻवाणनि चयो त सिंध में नवनि सूबनि वारा बयान मज़म्मत जोॻा आहिनि सिंध सदियुनि खां हिकु हुई ऐं हिकु ई रहंदी कंहिंखे बि सिंध तोड़ण न ॾींदासीं नवनि सूबनि वारो फ़ैसिलो वापसि वठी नफ़रत पखेड़ण बंदि कई वञे सिंध जे मुख़्तलिफ़ शहरनि में महांगाई ख़िलाफ़ जमायत इस्लामी जो एहतजाज फैज़गंज में जमायत इस्लामी रैली कढी धरणो हयो मिटीअ में बि जमायत इस्लामी जो एहतजाज चाचरो वेझो ॻोठु रतन जो तड़ में रहम ऐं समेजा बिरादरी में धुरियुनि में प्लाट जी मालिकीअ तां तकरार तेज़ रहम बिरादरी माण्हुनि जो उमरकोट छाछरो रोड ते धरणो इंतिज़ामिया खां नोटिस वठण जो मुतालबो मुज़ाहिरीन चयो त प्लाट बाबति अणधुरी जांच करे इंसाफ़ कयो वञे ॿी सूरत में एहतजाज जारी रहंदो मीरपुर भठोरो जे बॉयज़ हाई स्कूल जी इमारत ज़बून हाल हुअण ख़िलाफ़ उस्तादनि ऐं शागिर्दनि जो एहतजाज उस्तादनि चयो त स्कूल जी इमारत ख़तरनाक आहे क्लास ऐं स्टाफ रूम जे छितियुनि जा चापड़ किरी रहिया आहिनि ज़िंदगियूं ख़तरे हेठि आहिनि मीरपुर गोड़ो में ॻोठ अली मुराद जे ॻोठाणनि जो स्कूल में उस्ताद न हुअण ऐं बुनियादी सहूलियतनि जी को ख़िलाफ़ एहतजाज ॻोठाणनि चयो त स्कूल में उस्ताद हुअण सुधो ॿियूं बुनियादी सहूलियतूं न आहिनि स्कूल में उस्ताद मुक़ररु करे बुनियादी सहूलियतूं फराहम कयूं वञनि ऐं थाईलैंड जे राजधानी बैबाक में शागिर्द जे स्कूल में फायरिंग ॿ उस्ताद पंज उस्ताद मारिजी विया पुलिस मूजिब नाएं क्लास जे शागिर्द ॾाॾी ऐं ॾाॾे खे क़तल करण बाद स्कूल में पंजनि उस्तादनि खे निशानो बणायो वाके बाद हमिलो कंदड़ शागिर्द पाण बि आपघात करे छॾियो वाके में मारिजी वियल माण्हुनि जो मजमूई अंग अठ आहे
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज
2: इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरापुर होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद आई बा अख्तियार इदारो इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरापुर नईन मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कर रेट ते दस्तयाब आहे सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन ज़रिए जंहिंमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन ज़रिए कई वञे थी होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी ज़ेर निगरानी इरशाद ऑटोस हालाणी रोड मेहरापुर राब्ते जे लाइ 03201800003
3: खुशखबरी अपनी जिल्द को दे नई ताजगी चमक और खूबसूरती हाइड्रा फेशियल के साथ अब फिकर छोड़िए आपके शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है गहरी सफाई और फोरी ग्लो जिल्द को नरम और हाइड्रेट करे सन डैमेज और रंगत बेहतर बनाने में मददगार फेशियल रेजुविनेशन साफ तरोताजगी और जवान नजर आने वाली जिल्द जदीद टेक्नोलॉजी के साथ महफूज और मौसर स्किन केयर नोट खवातीन स्टाफ की निगरानी में की जाती है आज ही अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवाएं पता रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक नजद रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद थरी रोड मेहरापुर 03003385
4: मेहरान आयरन स्टोर हालाणी होलसेल डिपो अ नेम टू बी ट्रस्टेड
5: सरिया गार्डर टीयर एंगल चैनल पट्टी लोही दरवाजा सिल्वर जा चौंक सीमेंट रेती क्रेश ऐं रंग वगैरह बाजार खां बारियत दस्तियाब आहिनि
4: हाणे ई अचो मेहरान आयरन स्टोर नज़द बलोच पेट्रोल पंप नेशनल हाईवे हालाणी
5: राब्ते लाइ प्रोप्राइटर गुलाम नबी मुगल 03003204372 ऐं 02424601000

0: ऐं कालम में मौजूद आहिनि। फ़ौजी ॿाहिरनि लाइ ख़ुसूसी रियायत हूंदी। राब्ते लाइ फ़ौजी अब्दुल करीम 0301-5431-456 ऐं तौकीर अहमद 0306-1623-793।
1: अस्सलाम वालेकुम अदा।
2: वालेकुम अस्सलाम अदा, छो परेशान आई?
1: अदा नओ दुकान खोलियो अथम पर हले ही न तो, छा कजे?
2: अदा दुकान जी मशहूरी कराई अथई?
1: न अदा।
0: यार अॼुकल्ह शहरन तोड़े गोठन में जीअं मीरापुर FM 94 ई हले थो, मूं पंहिंजो दुकान खोलियो त FM मीरापुर ते पब्लिसिटी कराई। कारोबार अहिड़ो कामयाब वियो जो एड बंदि कराइण ते दिल्ली नथी चवे।
1: मुंहिंजे दुकान जी बेड हलंदी?
2: हा अदा, कारोबारी इश्तिहारात, आम इतला, मीलाद, मजलिस, सालगिरह जी मुबारक, मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइज़िंग हलंदी।
1: अदा जल्दी कर, मुखे मुंहिंजी एड्रेस ॿुधायो।
0: ऑफिस जी मीरापुर FM 94, नर्द गर्ल्स डिग्री कॉलेज, हालाणी रोड, मीरापुर।
2: राबते लाइ हाकिम अली जिस्कानी
3: 0301-399-2836।
4: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है। सुनते रहो जी FM 94।

0: It's 2:15 p.m.
1: This time check is brought to you by
2: D Skin Beauty Cream. Asli Glow Har Diya Josho. A product by Biocon International Pakistan. खुशखबरी, लेजर हेयर रिमूवल गैर जरूरी बालों को खत्म करने का जदीद हल। अब फिक्र छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में गिम्स अस्पताल गंबर्ट जिल्द के मशहूर डॉक्टर बशीर अहमद मेमन लेकर आए हैं चेहरे, बाजू, टांगे और पूरे जिस्म के गैर जरूरी बालों को खत्म करने के लिए महफूज और मौसर ट्रीटमेंट, बार बार वेक्स और शेविंग से निजात, नरम, साफ और खूबसूरत जिल्द, कम वक्त बेहतरीन नतायज। अब गैर जरूरी बालों की फिक्र खत्म लेजर हेयर रिमूवल के साथ। आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नजद रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, थरी रोड, मेहरापुर, 0300-338-5569।
3: अपना शहर, अपना घर, मेहरापुर, और मेहरापुर की आवाज GAFM 94।

0: खुशखबरी, क्या आप बालों के झड़ने से परेशान हैं? अब फिक्र छोड़िए, शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है बालों की जदीद और मौसर इलाज। एक्सोसोम्स एंड पीआरपी ट्रीटमेंट के साथ बालों का झड़ना कम करने में मददगार, कमजोर जड़ों को मजबूत बनाए, नए बालों की निशोनुमा में मदद दे, बालों को घना और सेहतमंद बनाए। घने मजबूत और खूबसूरत बालों के लिए आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद, थरी रोड मेहरापुर, 03003385569।
1: रोशनी का काफिला मंजिल की तरफ गामजन, मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर, शानदार तालीमी इमारत, प्रोफेसर कुर्बान अली मेमन, एयर कंडीशन्ड एकेडमिक ब्लॉक का इनेकार, मेहनती मुशाक और तजुर्बेकार तदरीसी अमला, सरसब्ज बागीचा, बेहतरीन फर्नीचर, शानदार कंप्यूटर, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी की लैब्स, ऑडियो और विजुअल लेक्चर सिस्टम की सहूलत, केमिस्ट्री फिजिक्स बायोलॉजी रियाजी और इंग्लिश पर खुसूसी तवज्जा, एंट्री टेस्ट के लिए मेडिकल और इंजीनियरिंग में काबिल तहसीन नतायज, खेलों का मैदान और वहां मुनक्किद होने वाले मुकाबले, तहरीर तकरीर और जहनी आजमाइश के मुकाबले, स्टडी टूर्स, अपनी आँखों के नूर बच्चियों और प्यारे बेटों की मयारी तालीम तरबियत के लिए आज ही मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर का विजिट करें। मजीद राबते के लिए डॉक्टर अल्ताफ हुसैन मेमन, मैनेजिंग डायरेक्टर मजहर स्कूल सिस्टम, 03000027234। निसार अहमद मेमन, प्रिंसिपल मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर, 03013865453।
2: खूबसूरती का असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम, इसमें मौजूद विटामिन ई बीट्स और जदीद माइक्रोबीट्स फॉर्मूला आपकी जिल्द को बनाए निखरी और चमकदार सिर्फ दो दिन में। डार्क स्पॉट्स को करे फेड और दे कुदरती असली ग्लो। डी स्किन ब्यूटी क्रीम, असली ग्लो हर दिन का शो।
3: आशिक होंडा शोरूम मेहरापुर, एटलेस होंडा मोटरसाइकिल ट्रूप पर एतमाद, अइमा अख्तियार 3S डीलर, आशिक होंडा मोटर्स मेहरापुर, जिते नई मोटरसाइकिल जी सेल, कंपनीया जे मुकरर कल रेट दे दस्तियाब आहे, सर्विस सेंटर, एटलेस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर, सर्विस एरिया, जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे, होंडा कंपनीया जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद। आशिक होंडा मोटर्स ते पहेंजे होंडा मोटरसाइकिल जी ट्यूनिंग करायो कंप्यूटराइज जैपनी स्टेचिंग मशीन जे जरिए, जिन्हें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर, फ्यूल एडजस्टमेंट, आरपीएम जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वन्य थी, होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जे जेर निगरानी। आशिक होंडा मोटर्स, एड्रेस इंडस बाईपास नस्त रेलवे लाइन मेहरापुर, राप्ते जिलाए आसिम हुसैन आराई, 03073592120।
4: खुशखबरी, जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक सामू वधन बोटा पेट्रोल पंप कोटड़ी कबीर रोड मेहरापुर, कराची इस्लामाबाद जो मशहूर डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमन एमए डीएचएमएस सिंध आरएचएमबी इस्लामाबाद, होम्योपैथिक कंसल्टेंट एंड फैमिली फिजिशियन सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाबशाह, हर अरबा खमीस जुमे छंछर आचर।

मरीजन के दवा स्टोर दा वठनी पौंदी माहिरे अमराज नक कन गलो पुरानो नज़लो निछो मथे जो सूर नजर जी कमजोरी कन जो वण कन जो सूर घट बुधण में

0: पथरी, मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जे कामयाब इलाज कयो वञे थो। गुर्दन जो इन्फेक्शन, चेहरे जो रंग सांवरो, चेहरे जी खारिश, फट फुरड़ियूं, बारन में कद जो न वधण, मर्दन ऐं औरतुन में वज़न जो न वधण, उन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वञे थो। राब्ते लाइ 0301-2196-8051।
1: अस्सलाम वालेकुम अदा।
2: वालेकुम अस्सलाम अदा, छो परेशान आई?
1: अदा नओ दुकान खोलियो अथम पर हले ही न तो, छा कजे?
2: अदा दुकान जी मशवरी कराई अथई?
1: न अदा।
3: यार आजकल शहरन तोड़े गोठन में जीए मीरापुर FM 94 ही हले थो। मु पंजो दुकान खोलियो तो FM मीरापुर ते पब्लिसिटी कराई, कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे।
1: मुझे दुकान जी बेड हलंदी?
2: हाँ अदा, कारोबारी इश्तिहारात, आम इतला, मिलाद, मजलिस, सालगिरह जी मुबारक, मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी।
1: अदा जल्दी कर, मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा।
3: ऑफिस जी मीरापुर FM 94, नज गर्ल्स डिग्री कॉलेज, हालानी रोड, मीरापुर।
2: राबते लाए हाकिम अली जिस्कानी,
4: 03013992836।
5: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है, सुनते रहो जी FM 94।

0: एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते
1: अपना शहर अपना घर मेहराबपुर और मेहराबपुर की आवाज GFM 94।

0: It's 3:15 p.m.
1: This time check is brought to you by White Ish Beauty Cream, Glowing Skin Jo Raaz, a product by Biocon International Pakistan. खुशखबरी, लेजर हेयर रिमूवल, गैर जरूरी बालों को खत्म करने का जदीद हल। अब फिक्र छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में गिम्स अस्पताल गंबर्ट जिल्द के मशहूर डॉक्टर बशीर अहमद मेमन लेकर आए हैं चेहरे, बाजू, टांगे और पूरे जिस्म के गैर जरूरी बालों को खत्म करने के लिए महफूज और मौसर ट्रीटमेंट, बार बार वेक्स और शेविंग से निजात, नरम, साफ और खूबसूरत जिल्द, कम वक्त बेहतरीन नतायज। अब गैर जरूरी बालों की फिक्र खत्म लेजर हेयर रिमूवल के साथ। आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नजद रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, खरी रोड, मेहरापुर, 03003385 69।

खुशखबरी, जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक साम्हूं वधण बोटा पेट्रोल पंप कोटड़ी कबीर रोड मेरापुर कराची ऐं इस्लामाबाद जो मशहूर डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमण एम ए डी एच एम एस सिंध आर एच एम पी इस्लामाबाद होम्योपैथिक कंसल्टेंट ऐं फैमिली फिज़िशियन सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाबशाह हर अरबा खमीस जुमे छंछर आचर ऐं

0: गलो पुरानो नज़लो निछो मथे जो सूर नज़र जी कमजोरी कन जो वण कन जो सूर घट बुधण में अचण शुगर ब्लड प्रेशर दिल जा मर्ज फालिज खंघ टीबी मादे जी अल्सर मादे जी जलन दिली जो वधण जिगर जा मर्ज हेपेटाइटिस बी सी गुर्दे जी पथरी मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जी कामयाब इलाज कयो वञे थो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी ख़ारिश फट फुरड़ियो ॿारनि में कद जो न वधण मर्दन ऐं औरतुनि में वज़न जो न वधण उन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वञे थो राब्ते लाइ 0301-2196-851।
1: खुशखबरी, क्या आप बालों के झड़ने से परेशान हैं? अब फिक्र छोड़िए, शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है बालों की जदीद और मौसर इलाज एक्सोसोम्स एंड पीआरपी ट्रीटमेंट के साथ बालों का झड़ना कम करने में मददगार कमजोर जड़ों को मजबूत बनाए नए बालों की निशोनुमा में मदद दे बालों को घना और सेहतमंद बनाए घने मजबूत और खूबसूरत बालों के लिए आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद खरी रोड मेहरापुर 03003385699।

0: मेरा वाइट एच ब्यूटी क्रीम 5-डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा विटामिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिसके मिनरल्स स्किन में फॉली एब्जॉर्ब हो जाए, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए, आपको दे बेटा निखरा निखरा चेहरा। वाइट एच ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। वाइट एच ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
1: अस्सलाम वालेकुम अदा।
2: वालेकुम अस्सलाम अदा, छो परेशान आई?
1: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो, छा कजे?
2: अदा दुकान जी मशवरी कराई थई
1: न अदा?
3: यार आज कल शहरन तोड़े गोठन में जी मेरा पर FM 94 ही हले थो। मु पंजो दुकान खोलियो तो FM मेरा पर ते पब्लिसिटी कराई, कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे।
1: मुझे दुकान जी बेड हलंदी?
2: हां अदा, कारोबारी इश्तिहारात, आम इतला, मिलाद, मजलिस, सालगिरह जी मुबारक, मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी।
1: अदा जल्दी कर मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा।
3: ऑफिस जी मेरापुर FM 94 नज़ गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मेरापुर। राबते लाए मंसूर अहमद मेमन 0301 380 8347।

0: आप सुनेंगे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
1: सरबराही इजलास थे सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान, वजीर आजम शहबाज शरीफ, तुर्क सदर रजब तैयब उर्दगान मके दिफाई मुआहदे ते सहयू कयूं। परडेही खाते मूजिब पाकिस्तान सऊदी ए तुर्किया दिफाई मुआहदे ते सहयू कयूं आहिन। मुआहदे तहत टिनी मुल्क दिफाई सहकार के हथी डींदा। मुआहदे तहत कें भी एक मुल्क ते हमलो टिनी मुल्क ते हमलो तस्वुर कयो वेंदो। मुआहदे जो मकसद टिनी मुल्क के दिफाई निज़ाम के मजबूत बनाइण आहे। अमेरिकी हथियारन में घटताई वारी खबर मीडिया ताई कीअं पहुती? अमेरिकी सदर ट्रंप जांच जो हुकुम ॾेई छॾियो। अमेरिकी अख़बार वॉल स्ट्रीट जर्नल जी रिपोर्ट मूजिब हथियारन जे ज़खीरे में घटताई वारियूं ख़बरूं लीक थियण ते सदर ट्रंप परेशान आहे। काबीना इजलास दौरान ऐं वेझनि साथियुनि सां बि ट्रंप नाराज़गी ज़ाहिर कई आहे। अमेरिका वधीक ड्रामा करण बदिरां हक़ीक़तूं तस्लीम कंदे कयल वाइदा पाड़े। ईरानी पार्लियामेंट जे स्पीकर मोहम्मद बाकिर कालेबाफ चयो आहे त धमकियुनि खां डिॼण वारा न आहियूं। अमेरिका खे हाणे हक़ीक़तूं तस्लीम करण घुर्जनि जंग बंदी बाबति कयल वाइदा पाड़े। नवाज लीग आज़ाद कश्मीर में हुकूमत ठाहींदी। आज़ाद कश्मीर में हुकूमत ठाहिण लाइ 23 सीटूं घुर्बल हूंदियूं आहिनि। नवाज लीग 24 सीटनि ते कामयाब थी चुकी आहे। आज़ाद कश्मीर जे इलाइक़े में हवेली में चूंड जलसे खे ख़िताब कंदे राणा सनावला चयो त आज़ाद कश्मीर में हाणे तरक़ीअ जो दौर शुरू थींदो। नवाज लीग वधीक कामयाबी माणींदी। सिक्योरिटी फोर्सिस जा केपीके जे मुख़्तलिफ़ इलाइक़नि में ऑपरेशन 10 ख़ारजी दहशतगर्द मारिजी विया। एसपीआर मूजिब ॾखण वज़ीरिस्तान जे इलाइक़े आज़म वक्स में ऑपरेशन कयो वियो। सिक्योरिटी फोर्सिस जी चेक पोस्ट ते हमले में मुलविस 8 ख़ारजी दहशतगर्द मारिजी विया। देर में कार्रवाई दौरान ॿिनि दहशतगर्दनि खे जहनम भेड़ो कयो वियो। सदर आसिफ ज़रदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ऐं ॿियनि पारां फोर्सिस खे कामयाब कार्रवाई ते भेटा पेश। शहबाज शरीफ चयो त क़ौम खे पाक फ़ौज सलाहियतनि ऐं क़ुर्बानीनि ते फ़ख्र आहे। मेडिकल बोर्ड में तब्दीलीअ ते वारसनि जे एतिराज़ बाद वापारी मीर रज़ा जी क़बरकुशाही मुलतवी। वकील जबरान नासिर चयो आहे त दिलि ते पथर रखी क़बरकुशाही जो फ़ैसिलो कयो हो। राति जी उदाई में फ़ैसिलो तब्दील कयो वियो। आई जी ते भरोसो नाहे। मीर रज़ा जे वालिद मीर हसन चयो आहे त कुझु बि थी वञे पोइ ते न हटंदसि। चवनि था 3 करोड़नि जो मसलो हो, ॿुधायो वञे कंहिंखे बचाइण जी कोशिश थी रही आहे। जंहिं बोर्ड ते असांखे एतमाद आहे उन खां ई पोस्टमार्टम करायो वञे। मियां साहब वेझो हथियारबंदनि पारां ॻोठ ते हमले में क़तल थियल शख़्स जे वारसनि जो लाश रखी धरणो। ॻोठाणनि शिकारपुर जकमाबाद रोड ते लाश रखी धरणो हयो। वारसनि चयो आहे त मारफाणी धुर हमलो करे नौजवान खे क़तल कयो। मेहू बि काहे विया आहिनि। पुलिस मूजिबि वाकियो चांडिया ऐं मारफाणी धुरियुनि में हलंदड़ तकरार जो नतीजो आहे। पीर जो ॻोठ भरिसां कानर बिरादरी जे ॿिनि धुरियुनि में फसुल जी भेल तां जहिड़ो हिकु ॼणो क़तल। ॻोठ उमर कानर में कानर बिरादरी जे ॿिनि धुरियुनि में जहिड़ो थियो। फायरिंग दौरान गोलियूं लॻण जे नतीजे में अब्दुल मजीद क़तल थी वियो। हिकु ॼणे जे क़तल बाद धुरियुनि में तकरार तेज़ थी वियो। मेहड़ भरिसां 3 ॿार पाणीअ जी खॾ में ॿुॾी विया। ॿिनि खे बचायो वियो। हिकु ॿार ॿुॾी फोत थी वियो। लाश हथ कई वई आहे। ॻोठ ज़ोरामाची में ही सभा जो लाश हथ कयो वियो। कोटड़ी में मलाह बिरादरी जे ॿिनि धुरियुनि में थियल झेड़े जो ज़ख़्मी फोत थी वियो। वारसनि जो कोटड़ी पुल ते लाश रखी धरणो। ज़िमेवारनि ख़िलाफ़ कार्रवाई जो मुतालबो। 4 ॾींहं अॻु मलाह बिरादरी जे ॿिनि धुरियुनि में झेड़े दौरान ज़ख़्मी थियल इब्राहिम मलाह फोत थियो। फोती नौजवान जे वारसन कोटड़ी पुल ते लाश रखी धरणो हयो। जवाबदार गिरफ़्तार करण जो मुतालबो। कंदकोट में क़ौमी अवामी तहरीक जी रैली। सिंध में सूबनि जे क़याम जे मुख़ालफ़त। अॻवाणनि चयो त सिंध में नवनि सूबनि वारा बयान मज़म्मत जोगा आहिनि। सिंध सदियुनि खां हिकु हुई ऐं हिकु ई रांदी। कंहिंखे बि सिंध टोड़ण न ॾींदासीं। नवनि सूबनि वारो फ़ैसिलो वापसि वठी नफ़रत पखिड़णु बंदि कई वञे। सिंध जे मुख़्तलिफ़ शहरनि में महांगाई ख़िलाफ़ जमायत इस्लामी जो एहतजाज। फैज़गंज में जमायत इस्लामी रैली कढी धरणो हयो। मिठीअ में बि जमायत इस्लामीअ जो एहतजाज। छाछरो वेझो गोड़ रतन जोतड़ में रहमाए समेत बिरादरी में प्लाट की मालिकियत तकरार तेज रहमाए बिरादरी माण्हुनि जो उमरकोट छाछरो रोड ते धरणो इंतजामिया खां नोटिस वठण जो मुतालबो मुजाहिरीन चयो त प्लाट बाबति अणधुरी जांच करे इंसाफ़ कयो वञे ॿी सूरत में एहतजाज जारी रहंदो मीरपुर भठोरो जे बॉयज़ हाई स्कूल जी इमारत ज़बून हाल हुअण ख़िलाफ़ उस्तादनि ऐं शागिर्दनि जो एहतजाज उस्तादनि चयो त स्कूल जी इमारत ख़तरनाक आहे क्लास ऐं स्टाफ रूम जे छतियुनि जा चापड़ किरी रहिया आहिनि ज़िंदगियूं ख़तरे हेठि आहिनि मीरपुर बुड़ो में ॻोठ अली मुराद जे ॻोठाणनि जो स्कूल
0: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज
2: इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद ऐं बा अख़्तियार इदारो इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर नईं मोटरसाइकिल जी सेल कंपनीअ जे मुक़ररु कयल रेट ते दस्तियाब आहे सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे होंडा कंपनीअ जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स ख़ुसूसी रियायत ते मौजूद इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज्ड जैपनीज टेस्टिंग मशीन जरिए जिनमें मिले थी मोटरसाइकिल की कारकर्दगी तमाम बेहतर फ्यूल एडजस्टमेंट RPMG एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज्ड जापानी मशीन जरिए कई वनी थी होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी ज़ेर निगरानी इरशाद ऑटोस हालानी रोड मेहरापुर राब्ते जे लाइ 0320180003
3: खुशखबरी अपनी जिल्द को दे नई ताजगी चमक और खूबसूरती हाइड्रा फेशियल के साथ अब फिकर छोड़िए आपके शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है गहरी सफाई और फोरी ग्लो जिल्द को नरम और हाइड्रेट करे सन डैमेज और रंगत बेहतर बनाने में मददगार फेशियल रेजुविनेशन साफ तरोताजगी और जवान नजर आने वाली जिल्द जदीद टेक्नोलॉजी के साथ महफूज और मौसर स्किन केयर नोट खवातीन स्टाफ की निगरानी में की जाती है आज ही अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवाएं पता रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक नजद रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद थरी रोड मेहरापुर 0300338569

0: It's 4:15 p.m.
1: This time check is brought to you by
2: D Skin Beauty Cream. Asli Glow Har Diya Josho. A product by Biocon International Pakistan. खुशखबरी, लेजर हेयर रिमूवल गैर जरूरी बालों को खत्म करने का जदीद हल। अब फिक्र छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में गिम्स अस्पताल गंबर्ट जिल्द के मशहूर डॉक्टर बशीर अहमद मेमन लेकर आए हैं चेहरे, बाजू, टांगे और पूरे जिस्म के गैर जरूरी बालों को खत्म करने के लिए महफूज और मौसर ट्रीटमेंट। बार बार वेक्स और शेविंग से निजात, नरम, साफ और खूबसूरत जिल्द, कम वक्त, बेहतरीन नतायज। अब गैर जरूरी बालों की फिक्र खत्म लेजर हेयर रिमूवल के साथ। आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, खरी रोड, मेहरापुर। 03003385569।

0: खुशखबरी, क्या आप बालों के झड़ने से परेशान हैं? अब फिक्र छोड़िए, शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है बालों की जदीद और मौसर इलाज, एक्सोसोम्स एंड पीआरपी ट्रीटमेंट के साथ बालों का झड़ना कम करने में मददगार, कमजोर जड़ों को मजबूत बनाए, नए बालों की निशोनुमा में मदद दे, बालों को घना और सेहतमंद बनाए। घने मजबूत और खूबसूरत बालों के लिए आज ही राबता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद, थरी रोड मेहरापुर, 03003385569।
1: खुशखबरी, जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक सामू वधन बोटा पेट्रोल पंप कोटली कबीर रोड मेहरापुर कराची इस्लामाबाद जो मशहूर डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमन एमए डीएचएमएस सिंध आरएचएमपी इस्लामाबाद होम्योपैथिक कंसल्टेंट एंड फैमिली फिजिशियन सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाबशाह हर अरबा खमीस जुमे छंछर आचर।

0: गुर्दे जी पथरी मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जी कामयाब इलाज कयो वने तो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी खारिश फट फुरड़ियों बारन में कद जो न वधण मर्दन ऐं औरतुन में वज़न जो न वधण उन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वञे थो राब्ते लाइ 0301-9196-851
1: खूबसूरती का असल राज सिर्फ दी स्किन ब्यूटी क्रीम इसमें मौजूद विटामिन ई बीड्स और जदीद माइक्रो बीड्स फॉर्मूला आपकी जिल्द को बनाए निखरी और चमकदार सिर्फ दो दिन में डार्क स्पॉट्स को करें फेड और दे कुदरती असली ग्लो दी स्किन ब्यूटी क्रीम असली ग्लो हर दिन का शो
2: आशिक होंडा शोरूम मेहरा पर एटलेस होंडा मोटरसाइकिल चौक पर एतमाद बा अख्तियार 3S डीलर आशिक होंडा मोटर्स मेहरा पर जिते नई मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कल रेट दे दस्तियाब है सर्विस सेंटर एटलेस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी है होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद आशिक होंडा मोटर्स ते पहेंजे होंडा मोटरसाइकिल जी ट्यूनिंग करायो कंप्यूटराइज जैपनी स्टेचिंग मशीन जे जरिए जिनमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वने थी होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जे जेर निगरानी आशिक होंडा मोटर्स एड्रेस इंडस बाईपास नस्त रेलवे लाइन मेहरापुर राप्ती जिलाए आसिम हुसैन आराई 0307-359-2120

पाकिस्तान सऊदी अरब ऐं तुर्किया मां कंहिं हिक ते हमिलो टिनी मुल्कनि ते समझो वेंदो। सऊदी अरब पाकिस्तान ऐं तुर्किया दिफ़ाई मुआदो करे छॾियो। सऊदी अरब जे शहर मका मुकरमा में टिनी मुल्कनि जो सरबराही इजलास में मुआदे ते सयूं कयूं वयूं। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान, वज़ीर आज़म शाहबाज़ शरीफ़ ऐं तुर्क सदर रिजब ते पुर्दगान मका दिफ़ाई मुआदे ते सयूं कयूं। परॾेही खाते चयो आहे त मुआदे तहत टई मुल्क दिफ़ाई सहकार खे हथी ॾींदा। मुआदे तहत कंहिं बि हिकु मुल्क ते हमिलो टिनी मुल्कनि ते हमिलो तसवुरु कयो वेंदो। मुआदो जो मक़सदु टिनी मुल्कनि जी दिफ़ाई निज़ाम खे मज़बूत बणाइणु आहे।

इस्लामाबाद जी हुकूमत खतरे में आहे, हुननि जी उबती गणप शुरू थी चुकी। वॾा वॾा माण्हू बि चई रहिया आहिनि त हुकूमत वञण वारी आहे। हुननि खे भुल आहे त आज़ाद कश्मीर में संदन हुकूमत ठहंदी। आज़ाद कश्मीर जे ज़िले बाग में चूंड जलसे खे ख़िताब कंदे पीपल्स पार्टी चेयरमैन बिलावल भुटो ज़रदारी चयो त नून लीग जो हिकु हिसो वज़ीर आज़म खे इतिहादनि सां बि विढ़ाइण चाहे थो। जेको मुल्क वज़ीर आज़म खे अख़्तियार ॾियण लाइ तयारु न आहे, उहो किन नवनि यूनिट्स या सूबनि जी ॻाल्हि करे सघे थो? अवाम ते एतमाद न कंदड़ मुल्क ते अवाम किन एतमाद करे सघे थो? गुड गवर्नेंस अवाम ते एतमाद सां ई बहाल थी सघे थी। अमरीकी हथियारनि में घटिताई वारी ख़बर मीडिया ताईं किन पहुती? अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप जांच जो हुकुम ॾेई छॾियो। अमरीकी अख़बार वॉल स्ट्रीट जर्नल जी रिपोर्ट मूजिबि हथियारनि जे ज़ख़ीरे में घटिताई वारियूं ख़बरूं लीक थियण ते सदर डोनाल्ड ट्रंप परेशान आहे। काबीना इजलास दौरान ऐं वेझनि साथियुनि सां बि ट्रंप नाराज़गी ज़ाहिर कई आहे। अमरीका वधीक ड्रामा करण बदिरां हक़ीक़तूं तस्लीम कंदे कयल वाइदा पाड़े। ईरानी पार्लियामेंट जे स्पीकर मोहम्मद बाकिर कालिबाफ चयो आहे त धमकियुनि खां डिॼण वारा न आहियूं, अमरीका खे हाणे हक़ीक़तूं तस्लीम करणु घुर्जनि, जंगबंदी बाबति कयल वादा पूरा करे।

मियां साहब भरसा में हूं फुरण दौरान मज़ामत हथियारबंद हथा हमले में कत्ल थियल धनार के वारसन जो लाश रखी धरणो ॻोठाणन शिकारपुर जेकबाबाद रोड से मकतूल फिदा हुसैन चांडियो जो लाश रखी धरणो हो एमपीए बुरहान चांडियो की मदाखलत से धरणो खत्म कयो वयो वारसन जो चवण हो तो मारफाणी धुर गोठ से बेगुनाह हमलो कर नौजवान के कत्ल कयो मेहूं भी काहे वया आहिन जवाबदारन के गिरफ्तार करे मेहूं मोटायूं वञनि पुलिस मूजिब वाक्यो चांडिया ए मारफाणी धुरन में हलंदड़ तकरार जो नतीजो है।

0: कॉलम में मौजूद आहिनि। फौजी भाइरनि लाइ ख़ुसूसी रिआयत हूंदी। राब्ते लाइ फौजी अब्दुल करीम 0301-5431-456 ऐं तौकीर अहमद 0306-1623-793।
1: इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर। होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद ऐं बा अख़्तियार इदारो इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर। नईं मोटरसाइकिल जी सेल कंपनीअ जे मुक़रर कयल रेट ते दस्तियाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया, जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनीअ जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स ख़ुसूसी रियायत ते मौजूद। इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज्ड जैपनीज टेस्टिंग मशीन ज़रिए, जंहिंमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट, RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन ज़रिए कई वञे थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी ज़ेर निगरानी। इरशाद ऑटोस, हालाणी रोड मेहरापुर। राब्ते जे लाइ 0320-180-003।
2: रोशनी का काफिला मंजिल की तरफ गामजन। मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर, शानदार तालीमी इमारत, प्रोफेसर कुर्बान अली मेमन, एयर कंडीशन्ड एकेडमिक ब्लॉक का इनेकार, मेहनती मुशाक और तजुर्बेकार तदरीसी अमला, सरसब्ज बागीचा, बेहतरीन फर्नीचर, शानदार कंप्यूटर, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी की लैब्स, ऑडियो और विजुअल लेक्चर सिस्टम की सहूलत, केमिस्ट्री फिजिक्स बायोलॉजी रियाजी और इंग्लिश पर खुसूसी तवज्जा, एंट्री टेस्ट के लिए मेडिकल और इंजीनियरिंग में काबिल तहसीन नतायज, खेलों का मैदान और वहां मुनक्किद होने वाले मुकाबले, तहरीर तकरीर और जहनी आजमाइश के मुकाबले, स्टडी टूर्स, अपनी आँखों के नूर बच्चियों और प्यारे बेटों की मयारी तालीम तरबियत के लिए आज ही मजर स्कूल सिस्टम मेहरापुर का विजिट करें। मजीद राबते के लिए डॉक्टर अल्ताफ हुसैन मेमन, मैनेजिंग डायरेक्टर मजर स्कूल सिस्टम 0300-002-7234। निसार अहमद मेमन, प्रिंसिपल मजर स्कूल सिस्टम मेहरापुर 0301-386-5453।
3: मेहरान आयरन स्टोर हालाणी, होलसेल डिपो, अ नेम टू बी ट्रस्टेड।
4: सरिया गार्डर टीयर एंगल चैनल पट्टी लोही दरवाजा सिल्वर जा चौंग सीमेंट रेती क्रेश आई रंग वगैरह बाजार का बारिया दस्तियाब आहिन।
3: हाणे अचो मेहरान आयरन स्टोर नज़्द बलोच पेट्रोल पंप नेशनल हाईवे हालाणी।
4: राब्ते लाए प्रोप्राइटर गुलाम नबी मुगल 0300-320-4372-0242-460100।
5: अस्सलाम वालेकुम अदा।
6: वालेकुम अस्सलाम अदा, छो परेशान आई
5: अदा? नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो, छा कजे
6: अदा? दुकान जी मशवरी कराई थई
5: न अदा?
3: यार आजकल शहरन तोड़े गोठन में जीए मेरापुर FM 94 ही हले थो। मु पंजो दुकान खोलियो तो FM मेरापुर ते पब्लिसिटी कराई, कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे।
5: मुझे दुकान जी बेड हरंदी?
6: हां दा, कारोबारी इश्तिहारात आम इतला मिलाद मजलिस सालगिरह जी मुबारक मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी आए।
5: अदा जल्दी कर मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा।
3: ऑफिस जी मेरापुर FM 94 नज़्द गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालाणी रोड मेरापुर।
6: राबते लाए हाकिम अली जिसकाणी
7: 0301-399-2836।

0: It's 5:15 PM.
1: This time check is brought to you by
2: D Skin Beauty Cream. Asli Glow Har Niya Josho. A product by Biocon International Pakistan. खुशखबरी, लेजर हेयर रिमूवल गैर जरूरी बालों को खत्म करने का जदीद हल। अब फिक्र छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में गिम्स अस्पताल गंबर्ट जिल्द के मशहूर डॉक्टर बशीर अहमद मेमन लेकर आए हैं चेहरे, बाजू, टांगे और पूरे जिस्म के गैर जरूरी बालों को खत्म करने के लिए महफूज और मौसर ट्रीटमेंट, बार बार वेक्स और शेविंग से निजात, नरम, साफ और खूबसूरत जिल्द, कम वक्त बेहतरीन नतायज। अब गैर जरूरी बालों की फिक्र खत्म लेजर हेयर रिमूवल के साथ। आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, थरी रोड, मेहरापुर, 0300-338-5569।
3: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है, सुनते रहो GFM 94।
4: आ जाते हैं उनकी लाइफ में तो वो समझते हैं कि बस जिंदगी यहाँ पर एंड हो गई है, अब सानू कुछ नहीं पता। अरे जनाब, अब तो आनू क्यों नहीं कुछ पता, अब ही तो मुश्किल दौर है। और जब आप इस मुश्किल दौर से या मुश्किल वक्त से या मुश्किल लम्हे से निकल जाते हैं तो ही तो आप सुरखुरु कहलाते हैं। तो जनाब, मुश्किल दौर से गुजरना ही बहादुरी है, जवां मर्दी है, क्योंकि मायूसी कुफ्र है। और मायूसी या नाउमीदी जो है ना, गुनाह या कुफ्र के बराबर समझी जाती है, क्योंकि अल्लाह ताला की रहमत से नाउमीदी को जाहिर करती है। दोस्तों, कुरान मजीद में भी है कि अल्लाह की रहमत से नाउमीद बिल्कुल मत हो और अल्लाह की ज़ात पर कामिल भरोसा रखे, क्योंकि मुश्किल के बाद आसानी जरूर जरूर जरूर आती है। वो कहते नहीं है कि इलामा इकबाल का एक शेर मुझे याद आ गया कि नाउमीदी गुनाह बातिल, नाउमीदी गुनाह बातिल, जितनी जिंदगी है उम्मीद की है। बिल्कुल जनाब, अंधेरा कितना भी गहरा क्यों ना हो, सुबह के सूरज निकलने से उसे कोई भी नहीं रोक सकता। इसी तरह मायूसी के अंधेरों के बाद उम्मीद का उजाला जरूर होता है। सो गाइस, स्टे विद अस और बी कूल, क्योंकि जनाब हमेशा अच्छे तरीके से, पॉजिटिव तरीके से सोचने से ही हमारी जिंदगी में पॉजिटिव असरात आते हैं। तो बी पॉजिटिव और हमेशा हंसते मुस्कुराते रहें, क्योंकि हम आपके साथ हैं। तो जनाब, आप हमें कॉल शॉल भी कर सकते हैं, अपनी फरमाइशें भी हमें बता सकते हैं। हमारा नंबर है 0300-113-4888 और हमें मैसेजेस तो आना शुरू हो चुके हैं हमारे बहुत प्यार प्यारे से दोस्तों के। जनाब, मैं आपको मैसेजेस प्रोग्राम के स्टार्ट में पढ़ के बताता चलूं कि अब्दुल रजाक हैं, कहते हैं कलाम बुधायो फौज सुमरो जो अज हिटकी वारो वार पुरी मेहरबानी थींदी। थैंक यू अब्दुल रजाक सो मच। मोहम्मद खान कुंभार, बेवफा जमाल कुंभार, सरदार मोहम्मद अली कुंभार, हालीपोटा स्टाफ, लगमीरपुर खास खान, थैंक यू सो मच। मुसव्विर अब्बास हमारे साथ हैं, कहते हैं अस्सलाम वालेकुम लाहौर से, नाइस शो। क्या बात है मुसव्विर अब्बास, आप हमें लाहौर से सुन रहे हैं तो थैंक यू सो मच कि आप हमें इतनी दूर से सुन रहे हैं। और आई लव यू कि जनाब आप हमें इतना जो है गौर से सुनते हैं, थैंक यू सो मच। नज़ीर खोसो हैं फ्राम सोबतपुर बलोचिस्तान और कहते हैं पीपल गिव इम्पॉर्टेंस अकॉर्डिंग टू देयर मूड, व्हेन देयर मूड इज डार्क योर इज आल्सो इम्पॉर्टेंट, व्हेन देयर मूड इज इन टू योर पैराग्राफ बिकम पॉइंटलेस। क्या बात है जनाब, बहुत अच्छी बात की कि जब इंसानों का मूड होता है ना, मूड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। जब उनका मूड अपना अच्छा होता है तो आपका जो है ना वो भी बहुत ज़्यादा काउंट किया जाता है, उसको भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है। लेकिन जब आप एक पैराग्राफ ही उन्हें लिख के भेज देते हैं तो वो भी बिल्कुल किसी काम का नहीं रहता, जब उनका मूड अच्छा नहीं होता तो। तो जरा मूड पे डिपेंड होता है बाकी, और हम चाहते हैं कि आपका मूड बहुत अच्छा रहे, इसलिए हम आपको बड़ी जबरदस्त जबरदस्त सी बातें सुनवाते हैं, आपके साथ बातें करते हैं। आप भी हमारे फेसबुक पेज पे जाके जनाब हमें मैसेजेस कर सकते हैं, अपनी फरमाइश प्ले कर सकते हैं। तो जनाब क्यों ना मैं कॉल शॉल नहीं लेता, गाना शाना ना चला दूं आपकी फरमाइश पे। कॉल शॉल का सिलसिला तो 2 घंटे तक जारी रहेगा, तो ये चीजें तो चलती रहेंगी जिंदगी के साथ साथ। होया लंबियां जुदाइयां हम जो मुक गए ने सारे, आहा समझ गए कि मैं कौन सा गाना चलाने वाला हूं। तो जनाब मैं आपका आपके लिए प्यारा सा गाना चला रहा हूं, तो इस गाने को सुनिएगा, सुनते रहिएगा GFM88 नेटवर्क से। आपका अपना शो है जनाब, आई लव यू ऑल विद अशफाक नियाजी। 7 बजे तक हम आपके साथ रहने वाले हैं, कहीं छोड़ के मत जाइएगा। मौसम वैसे भी आज का थोड़ा सा नॉर्मल शॉर्मल हुआ है, गर्मी भी है लेकिन टेम्परेचर है 39 सेंटीग्रेड, और 39 सेंटीग्रेड के साथ ये मौसम चल रहा है जो जिसकी अपडेट हम आपको दे रहे हैं। तो जनाब इस मौसम के साथ इस जबरदस्त से जो है हमारे गाने शाने को भी आप इंजॉय करें जो कि हम आपके लिए प्ले कर चुके हैं। तो सुनिए सुनते रहिए जी, आपका अपना शो। I love you all with Ashfaq Niazib.

0: जी जना वेलकम बैक हो या लंबिया जो दाइया हंजू मुक गए ने सारे, क्या बात है जना। बहुत प्यारा सा गाना आपकी समाचों की नजर किया और आपने बहुत सुना, बहुत अच्छा लगा। अब जनाब बिल्कुल कोई और बात किए लेते हैं जनाब, आपकी लाइव कॉल देखते हैं कि लाइन शाइन पर हमारे साथ कौन आने वाले हैं। आपने पहले पहले कॉल को कहते हैं अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी मुझे लगता है आवाज नहीं आ रही उनकी। अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम सलाम।
0: जी जी अदा खैर असा सबनी सा गरे किथा पे गलायो?
1: भाई मैं हबीबुल्ला सोलंगी तो गला हटड़ी गुलाम साहब।
0: हबीबुल्ला सोलंगी साहब फ्रॉम हटड़ी गुलाम शाह, केड़ा हाल चाल है हबीबुल्ला साहब?
1: खैर अशफाक भाई केड़ा हाल, खुश आयो?
0: सफा मस्त मौला। तमा यो बुधायो त हटड़ी गुलाम शाह सफा की लगो पियो आहे?
1: हां फसके दा लगो पा भाई
0: मजे में।
1: हां मजे में।
0: अच्छा जबरदस्त।
1: हां बे खैर असा खुश आयो?
0: जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त। छा कंदा आयो दा हबीबुल्ला?
1: अच्छा साईं जो हार पो कंदा हूं ये वणन जो फसल आ।
0: अच्छा अच्छा अच्छा हार पो कंदा आयो?
1: हां साईं। हां
0: सही सही सही मजे आत मना किए ता जो हार पो ले तो?
1: जी जी
0: हार पो किए ले तो ता जो
1: भलो तो ले साईं।
0: अच्छा माशाल्लाह माशाल्लाह। यो बुधायो केड़ो गानो बुधन चाहो था आज?
1: अच्छा साईं समन मीरा जो बुधंगा चाहू।
0: केड़ो?
1: तितर जाते यार बोलन शाम सुबड़ी।
0: तितर जाते यार बोलन
1: समझ
0: में आई कच्चे में मू चव कच्चे में घुमण हलूं कच्चे में घुमण हलूं मन सावक हूंदी हवा हूंदी बेला हूंदा ईअं न?
1: जी जी।
0: अच्छा अच्छा सही सही। तो कहीं जे नाले ते करना चाहो?
1: मजा बायरन कई जमी नम सोलंकी अब्दुल गनी सोलंकी रफी सोलंकी जो तो बाबर जे नाले आ जो जो के बुधंदा संगत इन जे नाले।
0: अच्छा अच्छा अच्छा सही सही सही सही सही
1: ठीक है मेहरबान।
0: साथ बहुत प्यारे से हमारे हबीबुल्ला भाई फ्रॉम हटड़ी और आप भी हमें कॉल कर सकते हैं। आप हमारा नंबर जनाब नोट डाउन कीजिए 03000113488।

0: सरकार आवाज़ घटे अच्छे से भी थोड़ा शोर शोर सिंगर शादी करे पोया था इसलिए न क्यों अच्छे
1: वो जी आवाज़ छोल है घट पी अच्छे या तो सिटी प्रॉब्लम भी हले थी
0: अभी
2: अच्छा मुझे आवाज़ हाँ अच्छी थी तांके हेलो
0: थोड़ी
2: क्लियर न थी अच्छे हाँ कदासी बाबा छा कदासी अस भला कोई गाल तुम ये बुधा शमन जो गालो जो प्ले क्या कें कर चाहो
0: हाँ सर हाँ आवाज़ बिल्कुल ठीक थी
2: हाँ ठीक थी
0: हाँ सब का पहले तां पूरी टीम के सर उनका बाद में सवार में बेचर चंदानी होंगे अली गुल कटबर होंगे डेडिकेट करना से उनका बाद में अली हसन भाई होंगे डेडिकेट करना से जितने भी फिल्म के आप बुझी रहे हैं सब ये समझ में आ रही है सर सर डेडिकेट करना से चाहे शो सर सर बिल्कुल इन टाइम बुझी रहे हैं
2: थैंक यू सो मच सोना खान भाई पंजो खास ख्याल रखो असा के दुआओं में हमेशा याद रखता कि वो माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह थैंक यू सो मच अदा सोना खान भाई हमेशा जीते रहें खुश रहें थैंक यू सो मच हमारे साथ जनाब सोना खान भाई और सोना खान भाई के बाद हम एक और कॉल भी लेंगे आप हमें कॉल कर सकते हैं जनाब और हमारे साथ रह सकते हैं शाम के 7 बजे तक और थोड़ी सी कमर्शियल ब्रेक भी आ जाएगी तो हम कमर्शियल ब्रेक के बाद आपका गाना प्ले करेंगे लेते शो की एक और कॉल अस्सलाम वालेकुम
3: वालेकुम अस्सलाम
2: केर अदा सा सबनी सा गडो गडो
3: अशफाक भाई इमाम दीन बंगरो साले पटगा
2: इमाम दीन भाई केड़ा हाल चाल है ता जा
3: अल्लाह से ता गांव खत या ता खुश आ ता टीम सजी सब दोस्त बाहर खुश न इतरा
2: सब सफा मस्त लगा पिया है ना ही तमा यो बुधायो ता छा प्या क्यों आज कल
3: हां भाई आज कल पांजे बनी जो कम कार पे के हूं ने वोन के जो वोन हुंदा ने फटी वारम जे दवा पे आना सुना
2: अच्छा ये वोन छा हुंदा है
3: गुड
2: यार वेरी गुड जबरदस्त यो बुधायो शमन जो गानो तो प्ले किया जानी कें जो नाले तो करना चाहे
3: असके हमेशा या खुशी हुंदी आ और रेंज सा यो लगा ता जेकर गुनगुनाए जा सजो तो थोड़ो गुनगुनाए
2: अरे मोस्ट वेलकम बिल्कुल गुनगुनाओ
3: हां सांग

0: रज ते यार बोल निशामस बुहड़े, रज ते यार बोल निशामस बुहड़े,
1: मूंखे तलाई माण्हू चवंदा आहिनि कचे अचे कचे अचे, मां ईंदो ई कोन आहियां छो त वञण त सवलो आहे, अचणु ॾुखियो
0: आहे।
1: थैंक्यू कचे वारा बि असांजो, कचे वारा बि असांजा दोस्त आहिनि, तव्हां बि असांजो दोस्त आहियो, पके वारा बि दोस्त आहिनि, सभु असांजा दोस्त आहिनि ऐं प्यारा
0: माण्हू। ऐं ज़वार मोहन बचल शमाणी प्रोग्राम ॿुधे थो, ऐं अली मोहन मिर्ग बुमर वॾी भिट ते तव्हांजो प्रोग्राम ॿुधंदा
1: ऐं
0: ॿिया जेके दोस्त प्रिंस प्यारा ॿुधंदा उनखे इलाही सारा सलाम, ऐं सोना खान मस्कोई खे इलाही सारा सलाम।
1: वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू अदा, पंहिंजो ख़ासि ख़्यालु रखो, थैंक यू। जी जनाब, हमारे साथ बहुत प्यारे से दोस्त, सब चलते हैं कदर कमर्शियल ब्रेक की जानिब, सो गाइस स्टे विद अस, हमारे साथ रहिएगा, कहीं मत जाइएगा।
2: इट्स 5:30 PM।
3: आशिक होंडा शोरूम मेहरापुर, एटलेस होंडा मोटरसाइकिल चुपर एटमाट, आई मा अख्तियार 3S डीलर, आशिक होंडा मोटर्स मेहरापुर, जिते नई मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कयल रेट ते दस्तियाब आहे। सर्विस सेंटर एटलेस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर, सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद। आशिक होंडा मोटर्स ते पंहिंजे होंडा मोटरसाइकिल जी ट्यूनिंग करायो कंप्यूटराइज जैपनी स्टेचिंग मशीन जे ज़रिए, जंहिंमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन ज़रिए कई वञे थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जे ज़ेर निगरानी। आशिक होंडा मोटर्स, एड्रेस इंडस बाईपास नस्त रेलवे लाइन मेहरापुर, राब्ते जे लाइ आसिम हुसैन आराई 0307-359-2120।
4: खुशखबरी, जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक साम्हूं वधण बोटा पेट्रोल पंप, कोटड़ी कबीर रोड मेरापुर, कराची ऐं इस्लामाबाद जो मशहूर डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमन MA DHMS सिंध RHMP इस्लामाबाद, होम्योपैथिक कंसल्टेंट ऐं फैमिली फिज़िशियन, सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाबशाह, हर अरबा ख़मीस जुमे छंछर आचर ऐं सूम

0: वठनी पवंदी माहिरे अमराज नक कन गलो पुराणो नज़लो निछो मथे जो सूर नज़र जी कमजोरी कन जो वण कन जो सूर घट ॿुधण में अचण शुगर ब्लड प्रेशर दिल जा मर्ज फॉलिज खंघ टीबी मादे जी अल्सर मादे जी जलन दिली जो वधण जिगर जा मर्ज हेपेटाइटिस बी सी गुर्दे जी पथरी मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जे कामयाब इलाज कयो वञे थो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी ख़ारिश फट फुरड़ियूं ॿारन में कद जो न वधण मर्दन ऐं औरतुनि में वज़न जो न वधण उन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वञे थो राब्ते लाइ 0301-2196-8051
1: खुशखबरी, क्या आप बालों के झड़ने से परेशान हैं? अब फिक्र छोड़िए, शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है बालों की जदीद और मौसर इलाज एक्सोसोम्स एंड पीआरपी ट्रीटमेंट के साथ बालों का झड़ना कम करने में मददगार कमजोर जड़ों को मजबूत बनाए नए बालों की निशोनुमा में मदद दे बालों को घना और सेहतमंद बनाए घने मजबूत और खूबसूरत बालों के लिए आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद थरी रोड मेहरापुर 03003385699

0: पंहिंजे शो आई लव यू ऑल में अशफाक न्याजी तव्हां सभिनी दोस्तनि सां गॾु आहे तव्हांजे पंहिंजे शो आई लव यू ऑल में ऐं जनाब शाम जे 7 बजे ताईं असां तव्हां सां गॾु रहंदासीं तव्हां असां सां गॾु रहंदो बिल्कुल जनाब तव्हां असांखे कॉल बि करे सघो था ऐं ज़बरदस्त अहिड़ा प्यारा प्यारा गीत बि ॿुधी सघो था 03001134888 असांजो नंबर आहे जनाब ऐं बिल्कुलु बग़ैर कंहिं हिजाब जे असांखे कॉल कयो जनाब पर तव्हां शर्मायो था असां अशफाक सां छा ॻाल्हाईंदासीं ऐं कहिड़ी फरमाइश कंदासीं त बिल्कुलु जनाब अॼुकल्ह फास्ट फॉरवर्ड दौर थी वियो आहे तव्हां मूंखे बिल्कुल कॉल करे सघो था वठूं था शो जी नेक्स्ट कॉल ऐं चऊं था पंहिंजे कॉलर खे अस्सलाम वालेकुम
1: वालेकुम अस्सलाम
0: जी जनाब केरु असां सभिनी सां गॾो गॾु
1: सागर थो ॻाल्हायां

0: बिल्कुल यार, जिंदगी त हलाइणी आहे न, पेट जो गुज़ारो त करणो आहे न। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा सागर, इहो ॿुधायो त 14 अगस्त जो जेको आहे सीज़न स्टार्ट थी चुको आहे, त मोटरसाइकिलूं ऑल्टर थियण लाइ अचनि थियूं, जे कोई कोई चवे थो त मुंहिंजो जेको आहे साइलेंसर कढी ॾियो। यार प्लीज़ ईअं न कजो, ख़ुदा जो न, साइलेंसर सभिनी जेका बि अचे न, सभिनी खे प्लीज़ खे तला ॾियो त इहा साइलेंसर था कढाइनि। कोई अगरि अचे बि सही त प्लीज़ ईअं कजो, परेशान करणु। ऐं जेका बाजा अची विया आहिनि पौ पौ वारा, ख़ुदा हुननि खे पुॼे त एग्ज़ैक्टली। सागर भाउ, कहिड़ो गानो ॿुधणु चाहियो था?
1: मां गानो महबूबन खान साहब ॿुधणु चाहींदुमि, पर थोरो मां ॿुधाईंदुमि।
0: जी जी बिल्कुलु बिल्कुलु।
1: बहुत खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत है, कसम चाहे बहुत खूबसूरत है।
0: जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त, क्या बात है जनाब आपकी, आप तो वाकई काफी सुरीले हैं यार।
1: नाम सागर है सर।
0: सागर नाम का वैसे असर भी पड़ता है ना? नाम का असर पड़ता है आवाज पर, तो आपकी आवाज पर आपका नाम का असर बहुत अच्छा पड़ा हुआ है।
1: सर मुझे गाने का वैसे शौक है, जो सुबह को चलता है ना प्रोग्राम का।
0: जी जी जी जी जी जी।
1: जिंदगी गुजार, उसमें कॉल करता रहता है, गाने सुनाता हूँ।
0: क्या बात है आपकी, क्या बात है सागर भाई, आप तो बड़े सुरीले हैं। ये बताइए गाना किसके नाम करना चाहते हैं?
1: गाने दोस्त है
0: जी जी,
1: रोशन।
0: अच्छा,
1: शौकत मीरानी
0: जी जी,
1: और रमजान चन्ना
0: जी जी,
1: और मैं खुद प्रेमी सागर।
0: क्या बात है प्रेमी। अच्छा सागर ऊपर से प्रेमी भी, क्या बात है। ये तो डबल डबल सुरीले हो गए, सागर भी है प्रेमी भी।
1: निकनेम होना चाहिए लाजमी।
0: हाँ निकनेम सागर भी और प्रेमी भी है, क्या बात है आपका। थैंक यू सागर, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। हमारे साथ जनाब प्रेमी सागर भाई और बड़े सुरीले किस्म के सागर भाई हमारे साथ मौजूद थे। तो जनाब अगर आपकी आवाज में भी दम है और आप भी चाहते हैं कि दुनिया आपको सुने, तो आप हमारे साथ आ जाइए, हमारे साथ शो में पार्टिसिपेट कीजिए और जनाब हमें बता दीजिए कि आपकी आवाज में कितना दम खम है। आप हमें कॉल कीजिए, लेते हैं शो की एक और कॉल, और अपने कॉलर को नहीं अभी टाइम हुआ जाता है जनाब एक कमर्शियल ब्रेक का। सो गाइज हम कमर्शियल ब्रेक की जानब बढ़ते हैं और कमर्शियल ब्रेक के बाद हम आपके साथ साथ हैं, आप हमें छोड़ के कहीं मत जाइएगा। अशफाक के साथ रहेगा शाम के 7 बजे तक।
2: सचल की सर मस्त धरती,
3: फातिया मेहरान, सिंध की एक और पहचान,
2: GAFM 88 नेटवर्क,
3: सिंध की आवाज। जिंदगी गुजारियो एतमाद सा, कुरान के समझी बुधंदा रहो। डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 मिंटन ते सिर्फ GAFM 88

0: ਗਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ
1: ਸਰਦਾਰ ਮੂਸਾ ਦੋਸਤ ਅਬਦੁਲ ਜਬਾਰ ਹੁਸੈਨ ਅਲੀ ਜਤੋਈ ਤਾਂਜੀ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਕੇ ਸਲਾਮ ਤਾਂਕੇ ਸਲਾਮ ਮੌਲਾ ਖੁਸ਼ ਰੱਖੇ ਪੱਥਰ ਖਾਂ ਅਬਦੁਲ ਵਹੀਦ ਜਤੋਈ ਤਾਂਜੀ ਸਭਿਨ ਲਿਸਨਰ ਕੇ ਸਲਾਮ ਮੌਲਾ ਖੁਸ਼ ਰੱਖੇ ਇਸਤਾਗ ਬਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੇਰਾ ਵਧਾਏ ਜੇਕਰ
0: ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਧਾਇੰਦਾਸੇ ਬਸ ਥੋੜੀ ਸਰਦੀ ਅਚੀ ਵਣੀ ਤੇ ਪੋਏ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਧਾਇੰਦਾਸੇ
1: हाँ
0: यार मानू आयो तरी कॉल कंदा आयो तरी चाचू पखे पखो चलाई तो वकार भाई प्यारे से भाई हमारे साथ मौजूद थे फ्रॉम लाड़काना और लाड़काना वाले बहुत प्यारे प्यारे से लोग हैं आप भी बहुत प्यारे से लोग हैं और जहां जहां तक मेरी आवाज सुन रही है जहां जहां तक हमारी आवाज सुनी जा रही है तमाम के तमाम बहुत प्यारे से लोग हैं एक्चुअली हमारे सिंध वासी बहुत प्यारे से लोग हैं लेते हैं शो की एक और कॉल देखते हैं लाइन पर हमारे साथ कौन है अस्सलाम वालेकुम
2: घर
0: वाला हाल कड़ा लगा पे कोई बोड बोड की सूरत हाल तो कोई
2: यार बोडल बिल्कुल हुई शदीद बोडल नहीं बस सुठी बोडल हाने कुछ पानी मोटी आ पोई ना
0: अच्छा अल्लाह रहम कंदो
2: बोडल भी खैर हुई भाई इशफाका
0: हाँ एक बिल्कुल तां सही था चाहो तो अल्लाह साईं हर कंहिं खे पंहिंजे हिफ़्ज़-ओ-अमान में रखे वहीद भाई यो बुधायो गर्मा गर्मी थोड़ी घट थी या हले थी
2: साईं गर्मी हवा आहे ताकि गर्मी भी आहे साईं
0: हवा भी आहे गर्मी भी आहे
2: बिल्कुल बिल्कुल
0: छो तो 39 सेंटीग्रेड तन वक्त सकर जो टेम्परेचर हले तो
2: जी जी साईं मां चैनल ते बुधो त हेल जे चए पियो हिकड़ो निमई दो उहो चए पियो त चई हेल गर्मी एॾियूं आहिनि जो हूअं थींदी आहे 40 त हेल थींदी 47 डिग्री
0: 47 बि टपी वई न हिन चकर त
2: हा
0: हैरत जहिड़ी ॻाल्हि पर असांखे बि अलाह ओतिरी हिमत ॾेई छॾियो आहे त माना असां बि बर्दाश्त करे वेंदा आहियूं ढी टंग वॾा
2: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल
0: वही बा गानो बुधाण वारो आ यहां एक जेको आ बहुत खूबसूरत है मेरा सनम केंजे नाले ता करन चाहो
2: अलका जो बुधाई दो
0: यो मेहदी हसन साहब जो
2: सही आ मेहदी हसन भी बेहतरीन फनकार आ पुराना फनकार आदा यो आता 14 अगस्त भी हले तो 8 तारीख आ माना सिलसिला जारी आ
0: जी जी जी बिल्कुल अगस्त आजादी जो महीनो आ
2: जी जी आजादी महीनो आ एकड़ो मा किसो कंदला भाई स्टॉक
0: हां बिल्कुल बिल्कुल
2: बादशाह आयो पे बेड़े ते
0: जी जी
2: दरिया था
0: जी
2: पो उते एकड़ो तोतो वेठो खेंजू में दरिया जे माना वटड़ी में खेंजू छिंदा माना काठिए ते वेठो
0: जी जी जी जी
2: ओ जो दरिया जी लहर पे अचे तो डूबे पे माना बुडे पे ओवर जे लहर मोटी वनी पे तो बाहर छे पे
0: जी जी जी
2: त बादशाह चयो रे बुडे तो जेकर नौकरन के हुकुम कए त यो पोतो पकड़े बेड़े ते विया है वनी बाग बालीचन में छाजो
0: सही सही सही
2: जले तोतो ते खणी आ बाग बालीचान बाछाड छान हुंदो
0: जी जी
2: त तोतो करे पो वतन वतन वतन
0: वाह वाह
2: बाछा चयो वञ भणा हुते त खेंजू में पयो हो चुलारे चए पे दरिया त बुडे पयो
0: सही सही
2: अज वतन वतन तो करे
0: सही
2: बाछा तंग छी नौकरन के वरी हुकुम कर बाबा हे उते वनी छडे अचो उते ने बेड़े ते काए वनी उते जो छजो तो उते वरी माठ करे वेही रहो अदा वतन वतन आजादी आजादी
0: एग्जैक्टली बिल्कुल सही गाल
2: है असन प्यारो पाकिस्तान हरी हरिया
0: सही सही सही सही
2: जादे ताडे मनाई सो तो सावले सावा कोई सावा का
0: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल अदा वही तो वफा हने गानो हलायो ना तो मेहदी साहब नाराज थी विंदो मेहदी हसन साहब
2: दोस्त है यार
0: जी जी जी बिल्कुल
2: महेश बाकता जी नाले ते सजो प्रोग्राम
0: जी
2: वकार जतो ये लाड़कान खाऊ
0: जी जी
2: एक बेटो नंढड़ो गालेंदा लाड़कान को आसिफ चाचड़
0: जी जी जी आसिफ चाचड़ के गालेंदा
2: हां जे बुदे तो न खोड़ सारा सलाम मैं जो भाव आ जाई न मैं जतो मैं जो भाटियो आया मैं जतो मैं जो भानी जा गोली मार सकर खाऊ रखी को जतो
0: जी जी जी जी जी
2: बाकी जे के हाल ताल बुदन ता वफा अब्दुल वहीद जतो पर सजे सतक सलाम मोर जतो भी बुदे तो बाकर जा खाऊ मोर जतो
0: थैंक यू सो मच वफा भाई जतो
2: बाय बाय
0: थैंक यू वफा वही जतोई के बाद हम चलाते हैं जनाब सागर भाई की फरमाइश पर बहुत खूबसूरत है मेरा सनम

अमेरिका वधीक ड्रामा करण बदिरां हकीकतूं तस्लीम कंदे कयल वायदा पूरा करे। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाकर कालिबाफ चयो आहे त धमकियुन खां डिॼण वारा न आहियूं, अमेरिका के हाणे हकीकतूं तस्लीम करण घुर्जन, जंगबंदी बाबत कयल वायदा पाड़े। आज़ाद कश्मीर में टे मरहले में थींदड़ चूंडन जो शेड्यूल तब्दील, बिन ज़िलन में चूंड मुलतवी कई वई। आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन कमिश्नर भौंच ए सद नौती ज़िलन में चूंडू मुलतवी कर छ्य। आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन कमीशन मूजिब हाँ बाग ए हवेली ज़िले में टे मरहले दौरान चूंड थी, बिन ज़िलन में चूंड मुलतवी कई वही है। पुराने शेड्यूल मूजिब भौंच डिवीज़न के चैनी ज़िलन के 11 सीटन से टे मरहले में चूंड थी हुई। नवाज लीग आज़ाद कश्मीर में हुकूमत ठाहींदी, आज़ाद कश्मीर में हुकूमत ठाहिण लाइ 23 सीटूं घुर्बल हूंदियूं आहिनि। नवाज लीग 24 सीटुनि ते कामयाब थी चुकी आहे। आज़ाद कश्मीर जे इलाइक़े में इलाइक़े हवेलीअ में चूंड जलसे खे ख़िताब कंदे राणा सना चयो त आज़ाद कश्मीर में हाणे तरक़ीअ जो दौरु शुरू थींदो, नवाज़ लीग वधीक कामयाबी माणींदी।

0: ऐं कालम में मौजूद आहिनि। फौजी ॿाहिरनि लाइ ख़ुसूसी रिआयत हूंदी। राब्ते लाइ फौजी अब्दुल करीम 0301-54-431-456 ऐं तौकीर अहमद 0306-1623-793।
1: मेहरान आयरन स्टोर हालाणी होलसेल डिपो अ नेम टू बी ट्रस्टेड।
2: सरिया गार्डर टीयर एंगल चैनल पट्टी लोही दरवाजा सिल्वर जा चौंग सीमेंट रेती क्रेश ऐं रंग वगैरह बाजार खां बारियत दस्तियाब आहिनि।
1: हाणे अचो मेहरान आयरन स्टोर नज़्द बलोच पेट्रोल पंप नेशनल हाईवे हालाणी।
2: राब्ते लाइ प्रोप्राइटर गुलाम नबी मुगल 0300-320-4372 ऐं 0242-460-1100।

0: खुशखबरी, लेजर हेयर रिमूवल गैर जरूरी बालों को खत्म करने का जदीद हल। अब फिक्र छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में गिम्स अस्पताल गंबर्ट जिल्द के मशहूर डॉक्टर बशीर अहमद मेमन लेकर आए हैं चेहरे, बाजू, टांगे और पूरे जिस्म के गैर जरूरी बालों को खत्म करने के लिए महफूज और मौसर ट्रीटमेंट, बार बार वेक्स और शेविंग से निजात, नरम, साफ और खूबसूरत जिल्द, कम वक्त बेहतरीन नतायज। अब गैर जरूरी बालों की फिक्र खत्म लेजर हेयर रिमूवल के साथ। आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद, थरी रोड मेहरापुर, 0300-338-5569।
1: आशिक होंडा शोरूम मेहरापुर, एटलेस होंडा मोटरसाइकिल जो पर एतमाद, अइमा अख्तियार 3S डीलर, आशिक होंडा मोटर्स मेहरापुर, जिते नई मोटरसाइकिल जी सेल, कंपनी जे मुकरर के रेट दे दस्तियाब है। सर्विस सेंटर एटलेस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर, सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी है। होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद। आशिक होंडा मोटर्स ते पहेंजे होंडा मोटरसाइकिल जी ट्यूनिंग करायो कंप्यूटराइज जैपनी स्टेचिंग मशीन जे जरिए, जिनमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट, RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वन्य थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जे जेर निगरानी। आशिक होंडा मोटर्स, एड्रेस इंडस बाईपास नस्त रेलवे लाइन मेहरापुर, राप्ती जिलाए आसिम हुसैन आराई, 0307-359-2120।
0: खुशखबरी, क्या आप बालों के झड़ने से परेशान हैं? अब फिक्र छोड़िए, शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है बालों की जदीद और मौसर इलाज, एक्सोसोम्स एंड PRP ट्रीटमेंट के साथ बालों का झड़ना कम करने में मददगार, कमजोर जड़ों को मजबूत बनाए, नए बालों की निशोनुमा में मदद दे, बालों को घना और सेहतमंद बनाए। घने मजबूत और खूबसूरत बालों के लिए आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद, थरी रोड मेहरापुर, 0300-338-5569।

पाकिस्तान सऊदी अरब ऐं तुर्किया मां कंहिं हिक ते हमिलो टिन्ही मुल्कनि ते हमिलो सम्झो वेंदो। टिन्ही मुल्कनि तारीख़ी दिफ़ाई मुआदो करे छॾियो। सऊदी अरब जे शहर मकाम करमा में टिन्ही मुल्कनि जो सरबराही इजलास में मुआदे ते सयूं कयूं वयूं। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ़ ऐं तुर्क सदर रजब ते बर्दगान मका दिफ़ाई मुआदे ते सयूं कयूं। परॾेही वज़ारत जे तर्जुमान चयो आहे त मुआदे तहत टई मुल्क दिफ़ाई सहकार खे हथी ॾींदा। मुआदे तहत कंहिं बि हिकु मुल्क ते हमिलो टिन्ही मुल्कनि ते हमिलो तसवुरु कयो वेंदो। मुआदे जो मक़सदु टिन्ही मुल्कनि जी दिफ़ाई निज़ाम खे मज़बूत बणाइणु आहे।

0: पीपल्स पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी चयो आहे त पीपी नून नवन सूबनि बाबति तमाम जी राय खे अहमियत ॾींदी। नवां सूबा ठाहिण आवाम जो फ़ैसिलो आहे त हू गॾु आहिनि, आवाम जो नाहे त इन जी मुखालफ़त कबी। आवाम जे ख़िलाफ़ थींदड़ को बि फ़ैसिलो हरगिज़ क़बूल नाहे। बाग में चूंड जलसे खे ख़िताब कंदे बिलावल भुट्टो चयो त मुल्क में केतिरा ई भेरा आइन टोड़ियो वियो, हाणे चवनि था त निज़ाम तबाह थी वियो आहे। निज़ाम नाकाम नाहे पर उनखे नाकाम बणायो वियो आहे। आवाम जी हाकमियत तस्लीम करण ताईं सिस्टम न हली सघंदो। नून लीग आज़ाद कश्मीर में हुकूमत ठाहींदी। आज़ाद कश्मीर में हुकूमत ठाहिण लाइ 23 सीटूं घुर्बल हूंदियूं आहिनि। नवाज़ लीग 24 सीटुनि ते कामयाब थी चुकी आहे। आज़ाद कश्मीर जे इलाइक़े हवेली चूंड जलसे खे ख़िताब कंदे राणा सनाउला जो चवण हो त आज़ाद कश्मीर में हाणे तरक़ीअ जो दौर शुरू थी चुको आहे। नून लीग वधीक कामयाबी माणींदी। आज़ाद कश्मीर में टे मरहले में थींदड़ चूंडुनि जो शेड्यूल तब्दील। ॿिनि ज़िलनि में चूंड मुलतवी कई वई। आज़ाद कश्मीर जे इलेक्शन कमिश्नर भोंच ऐं सुध नौती ज़िलनि में चूंडूं मुलतवी करे छॾियूं। आज़ाद कश्मीर जे इलेक्शन कमीशन मूजिबि हाणे बाग ऐं हवेली ज़िले में टे मरहले दौरान चूंड थींदी। ॿिनि ज़िलनि में चूंड मुलतवी कई वई आहे। पुराणी शेड्यूल मूजिबि भोंच डिवीज़न जे चइनि ज़िलनि जी 11 सीटनि ते टे मरहले में चूंड थियणी हुई। इरसा में चीफ इंजीनियर ऑपरेशन जी मुक़ररी ते नओं तकरार। सिंध जे मेंबर डिपुटेशन ते मुक़ररी वारी तजवीज़ ते एतिराज़ वारे छॾियो। आपाशी खाते जे सेक्रेटरीअ खे ख़त। शफ़क़त हुसैन विधो चयो आहे त तजवीज़ कयल ऑफिसर वटि आपाशी निज़ाम जी रेगुलेशन जो घुर्बल तजुर्बो ई मौजूदु न आहे। मेरिट जे बुनियाद ते अहिड़ो ऑफिसर मुक़ररु कयो वञे जंहिं वटि आपाशी निज़ाम जी रेगुलेशन ऐं पाणी विर्छ जो वसी तजुर्बो हुजे। अमरीकी हथियारनि में घटिताई वारी ख़बर मीडिया ताईं कीअं पहुती। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप जांच जो हुकुम ॾेई छॾियो। अमरीकी अख़बार वॉल स्ट्रीट जर्नल जी रिपोर्ट मूजिबि हथियारनि जे ज़ख़ीरे में घटिताई वारियूं ख़बरूं लीक थियण ते सदर डोनाल्ड ट्रंप परेशान आहे। वेझनि साथियुनि सां बि डोनाल्ड ट्रंप नाराज़गी ज़ाहिर कई आहे।
1: आप सुन रहे थे जीएफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।

0: प्लेन ऐं कालम में मौजूद आहिनि। फ़ौजी भाइरनि लाइ ख़ुसूसी रियायत हूंदी। राब्ते लाइ फ़ौजी अब्दुल करीम 0301-5431-456 ऐं तौकीर अहमद 0306-1623-793।
1: इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद ऐं बा अख़्तियार इदारो इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर नईं मोटरसाइकिल जी सेल कंपनीअ जे मुक़ररु कयल रेट ते दस्तियाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनीअ जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स ख़ुसूसी रियायत ते मौजूद। इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज्ड जैपनीज टेस्टिंग मशीन ज़रिए जंहिंमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वनी थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी ज़ेर निगरानी इरशाद ऑटोस हालाणी रोड मेहरापुर राब्ते जे लाइ 0320180003।
2: खुशखबरी, अपनी जिल्द को दे नई ताजगी, चमक और खूबसूरती हाइड्रा फेशियल के साथ। अब फिकर छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है। गहरी सफाई और फोरी ग्लो जिल्द को नरम और हाइड्रेट करे, सन डैमेज और रंगत बेहतर बनाने में मददगार। फेशियल रेजुविनेशन, साफ तरोताजगी और जवान नजर आने वाली जिल्द, जदीद टेक्नोलॉजी के साथ महफूज और मौसर स्किन केयर। नोट, खवातीन स्टाफ की निगरानी में की जाती है। आज ही अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवाएं। पता, रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नजद रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, थरी रोड, मेहरापुर। 03003385699।

0: It's 7:15 p.m.
1: This time check is brought to you by White-ish Beauty Cream, Glowing Skin Jo Raaz, a product by Biocon International Pakistan. खुशखबरी, लेजर हेयर रिमूवल, गैर जरूरी बालों को खत्म करने का जदीद हल। अब फिक्र छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में गिम्स अस्पताल गंबर्ड जिल्द के मशहूर डॉक्टर बशीर अहमद मेमन लेकर आए हैं चेहरे, बाजू, टांगे और पूरे जिस्म के गैर जरूरी बालों को खत्म करने के लिए महफूज और मौसर ट्रीटमेंट, बार बार वेक्स और शेविंग से निजात, नरम, साफ और खूबसूरत जिल्द, कम वक्त बेहतरीन नतायज। अब गैर जरूरी बालों की फिक्र खत्म लेजर हेयर रिमूवल के साथ। आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज्द रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, खरी रोड, मेहरापुर, 03003385 69।

0: देखिए ड्रामा सीरियल इश्क तुमसे हुआ, पीर से जुमेरात रात 9 बजे सिर्फ ग्रीन एंटरटेनमेंट पर।
1: खुशखबरी, जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक सामू वधन बोटा पेट्रोल पंप कोटली कबीर रोड मेरा पर कराची इस्लामाबाद जो मशहूर डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमन एमए डीएचएमएस सिंध आरएचएमपी इस्लामाबाद होम्योपैथिक कंसल्टेंट एंड फैमिली फिजिशियन सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाबशाह हर अरबा खमीस जुम्मे छंछर आचर।

मरीजन के दवा स्टोर दा वठनी पौंदी माहिर अमराज नक कन गलो पुरानो नज़लो निछो मथे जो सूर नजर जी कमजोरी कन जो वण कन जो सूर घट बुधण में अचण शुगर ब्लड प्रेशर दिल जा मर्ज फालिज खंघ टीबी मादे जी अल्सर मादे जी जलन दिली जो वधण जिगर जा मर्ज हेपेटाइटिस बी सी गुर्दे जी पथरी मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जे कामयाब इलाज कयो वञे थो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी ख़ारिश फट फुरड़ियों बारन में कद जो न वधण मर्दन ऐं औरतुन में वज़न जो न वधण उन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वञे थो राबते लाइ 0301 91 896

0: खुशखबरी, क्या आप बालों के झड़ने से परेशान हैं? अब फिक्र छोड़िए, शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है बालों की जदीद और मौसर इलाज, एक्सोसोम्स एंड पीआरपी ट्रीटमेंट के साथ बालों का झड़ना कम करने में मददगार, कमजोर जड़ों को मजबूत बनाए, नए बालों की निशोनुमा में मदद दे, बालों को घना और सेहतमंद बनाए। घने मजबूत और खूबसूरत बालों के लिए आज ही राबता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद, थरी रोड मेहरापुर, 03003385569।
1: इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरापुर, होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद आई बा अख्तियार इदारो, इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरापुर, नईन मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कर रेट ते दस्तयाब आहे, सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे, होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद, इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन जरिए जिनमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर, फ्यूल एडजस्टमेंट आरपीएमजी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वनी थी, होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी जेर निगरानी, इरशाद ऑटोस हालानी रोड मेहरापुर, राबते जे लाए 03200180003।
2: अस्सलाम वालेकुम अदा।
3: वालेकुम अस्सलाम अदा, छो परेशान आई
2: अदा? नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो, छा कजे
3: अदा? दुकान जी मशवरी कराई थई
2: न अदा?
4: यार आज कल शहरन तोड़े गोठन में जी मेरा पर एफएम 94 ही हले थो, मो पंजो दुकान खोलियो तो एफएम मेरा पर ते पब्लिसिटी कराई, कारोबार एड़ो कामयाब जो एड बंद कराण ते दिल्ली नथी चवे।
2: मुझे दुकान जी बेड हरंदी?
3: हां दा, कारोबारी इश्तिहारात आम इतला मिलाद मजलिस सालगिरह जी मुबारक मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी आए।
2: अदा जल्दी कर मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा।
4: ऑफिस जी मेरापुर एफएम 94 नज गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मेरापुर, राबते लाए मंसूर अहमद मेमन 03013808347।
5: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है, सुनते रहो जी एफ एम 94।

0: आप सुनेंगे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
1: नून लीग का एक खास एक हिस्सा वजीर आजम के हर कोशिश को नाकाम करवाता है। असल लड़ाई तो इस्लामाबाद और लाहौर का हो रहा है। हम कब तक कश्मीर के आवाम को इंशाल्लाह पे चलाएंगे?
2: इस्लामाबाद जी हुकूमत खतरे में आए, उन्हें जुबती गणप शुरू थी चुकी। या गाल असा न पया कयूं, पर वड़ा वड़ा मानू भी चवन पया ता हुकूमत वञण वारी आहे। वजीर आजम जे चौधारी वेठल मानू जी नियत साफ ना है। नून लीग जो एक हिस्सो वजीर आजम के रुगो मुखालिफ धुर न पर इतिहादन सां भी वेढ़ण चाहे तो। ये असुल जेड़ो लाहौर इस्लामाबाद विच में आहे। पीपल्स पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी आजाद कश्मीर के इलाके बाग में चूंड जलसे के खिताब कंदे चयो त आजाद कश्मीर में मरहलेवार चूंडू इन लाइ करायूं वयूं त जीअं दांदली करे सघिजे। कें दांदली सटियल इलेक्शन कबूल ना है। नून लीग वारा इन भुल में न रहन त आजाद कश्मीर में हुकूमत ठाहे वठंदा। ये न सच कमीशन जोड़न लाइ तैयार आहिनि ऐं नई वरी शफ़ाफ़ चूंडू पिया कराइनि। कश्मीर हिकु आहे त चूंडू बि हिकु ई ॾींहुं थियणु घुरिजनि था।

0: पाकिस्तान सऊदी अरब ए तुर्किया में कें एक ते हमलो टिन्ही मुल्कन ते समझो वेंदो टिन्ही मुल्कन तारीखी दिफाई मुआहिदो करे छड़ियो सऊदी अरब के शहर मकाम करमा में टिन्ही मुल्कन जो सरबराही इजलास में मुआहिदे ते सहियूं कयूं वयूं सऊदी वलीअद मोहम्मद बिन सलमान वजीर आजम शहबाज शरीफ ए तुर्क सदर रजब ते बर्दगान मक्का दिफाई मुआहिदे ते सहियूं कयूं परदेही वज़ारत जे तर्जमान चयो आहे त मुआहिदे तहत टई मुल्क दिफाई सहकार खे हथी ॾींदा मुआहिदे तहत कंहिं बि हिकु मुल्क ते हमिलो टिन्ही मुल्कनि ते हमिलो तसवुरु कयो वेंदो मुआहिदे जो मक़सदु टिन्ही मुल्कनि जे दिफ़ाई निज़ाम खे मज़बूत बणाइणु आहे
1: आप सुन रहे थे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज

0: कालम में मौजूद आहिन फौजी भाइरन लाइ ख़ुसूसी रियायत हूंदी राबते लाइ फौजी अब्दुल करीम 0301-54-4456 ऐं तौकीर अहमद 0306-16-23-793।
1: इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद ऐं बा अख्तियार इदारो इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर नईं मोटरसाइकिल जी सेल कंपनीअ जे मुकरर कयल रेट ते दस्तियाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनीअ जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद। इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन ज़रिए जंहिंमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन ज़रिए कई वञे थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी ज़ेर निगरानी इरशाद ऑटोस हालाणी रोड मेहरापुर राब्ते जे लाइ 0320-18-00-003।
2: खुशखबरी अपनी जिल्द को दे नई ताजगी चमक और खूबसूरती हाइड्रा फेशियल के साथ। अब फिक्र छोड़िए आपके शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है। गहरी सफाई और फोरी ग्लो जिल्द को नरम और हाइड्रेट करे सन डैमेज और रंगत बेहतर बनाने में मददगार। फेशियल रेजुविनेशन साफ तरोताजगी और जवान नजर आने वाली जिल्द जदीद टेक्नोलॉजी के साथ महफूज और मौसर स्किन केयर नोट खवातीन स्टाफ की निगरानी में की जाती है। आज ही अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवाएं। पता रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक नजद रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद थरी रोड मेहरापुर 0300-335-69।
3: रोशनी का काफिला मंजिल की तरफ गामजन मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर शानदार तालीमी इमारत प्रोफेसर कुर्बान अली मेमन एयर कंडीशन्ड एकेडमिक ब्लॉक का इनेकार मेहनती मुशाक और तजुर्बेकार तदरीसी अमला सरसब्ज बागीचा बेहतरीन फर्नीचर शानदार कंप्यूटर फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी की लैब्स ऑडियो और विजुअल लेक्चर सिस्टम की सहूलत केमिस्ट्री फिजिक्स बायोलॉजी रियाजी और इंग्लिश पर खुसूसी तवज्जा एंट्री टेस्ट के लिए मेडिकल और इंजीनियरिंग में काबिल तहसीन नतायज खेलों का मैदान और वहां मुनक्किद होने वाले मुकाबले तहरीर तकरीर और जहनी आजमाइश के मुकाबले स्टडी टूर्स अपनी आँखों के नूर बच्चियों और प्यारे बेटों की मयारी तालीम तरबियत के लिए आज ही मजर स्कूल सिस्टम मेहरापुर का विजिट करें। मजीद राबते के लिए डॉक्टर अल्ताफ हुसैन मेमन मैनेजिंग डायरेक्टर मजर स्कूल सिस्टम 0300-00-27234 निसार अहमद मेमन प्रिंसिपल मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर 0301-386-5453।
4: मेहरान आयरन स्टोर हालानी होलसेल डिपो अ नेम टू बी ट्रस्टेड
5: सरिया गार्डर टीयर एंगल चैनल पट्टी लोही दरवाजा सिल्वर जा चौंग सीमेंट रेती क्रेश आई रंग वगैरह बाजार का बारिया दस्तयाब आई
4: हाने यचो मेहरान आयरन स्टोर नज बलोच पेट्रोल पंप नेशनल हाईवे हालानी
5: राबते लाए प्रोप्राइटर गुलाम नबी मुगल 0300-320-4372 आई 0242-460100।
6: सुबह की चाय या ट्रैफिक का जाम हर पल फन GFM बदलती लाइफ की ट्रेजेडी
7: ये

खुशखबरी जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक साम्हूं वधण बोटा पेट्रोल पंप कोटली कबीर रोड मेरापुर कराची ऐं इस्लामाबाद जो मशहूर डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमण एम ए डी एच एम एस सिंध आर एच एम बी इस्लामाबाद होम्योपैथिक कंसल्टेंट ऐं फैमिली फिज़िशियन सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाबशाह हर अरबा खमीस जुमे छंछर आचर ऐं सूमर।

0: तो मेरा फैन।
1: वाइट एच ब्यूटी क्रीम 5 डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा विटामिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिसके मिनरल्स स्किन में फॉली एब्जॉर्ब हो जाए, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए, आपको दे बेटा निखरा निखरा चेहरा। वाइट एच ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। वाइट एच ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: अस्सलाम वालेकुम अदा।
3: वालेकुम अस्सलाम अदा, छो परेशान आई?
2: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो, छा कजे?
3: अदा दुकान जी मशवरी कराई थई
2: न अदा?
4: यार आज कल शहरन तोड़े गोठन में जी मेरा पर FM 94 ही हले थो। मु पंजो दुकान खोलियो तो FM मेरा पर ते पब्लिसिटी कराई, कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे।
2: मुझे दुकान जी बेट हलंदी?
3: हां अदा, कारोबारी इश्तिहारात, आम इतला, मिलाद, मजलिस, सालगिरह जी मुबारक, मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी।
2: अदा जल्दी कर मुखे बुंजे एड्रेस तो बुदा।
4: ऑफिस जी मेरापुर FM 94 नज़ गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मेरापुर। राबते लाए मंसूर अहमद मेमन 0301-380-8347।
5: अपना शहर अपना घर मेहराबपुर, और मेहराबपुर की आवाज GA FM 94।

पाकिस्तान, सऊदी अरब ए तुर्किया मां कहीं एक ते हमलो टिन्ही मुल्कन ते समझो वेंदो। टिन्ही मुल्कन तारीखी मक्का गडल दिफाई मुआहिदो करे छॾियो। सऊदी अरब जे शहर मक्का मुकरमा में टिन्ही मुल्कन जो सरबराही इजलास में मुआहिदे ते सहियूं कयूं वयूं। सऊदी वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ए तुर्क सदर रजब ते बर्दगान मक्का दिफाई मुआहिदे ते सहियूं कयूं। परॾेही वज़ारत जे तर्जुमान चयो आहे त मुआहिदे तहत टई मुल्क दिफ़ाई सहकार खे हथी ॾींदा। मुआहिदे तहत कंहिं बि हिकु मुल्क ते हमिलो टिन्ही मुल्कनि ते हमिलो तसवुरु कयो वेंदो। मुआहिदे जो मक़सदु टिन्ही मुल्कनि जी दिफ़ाई निज़ाम खे मज़बूत बणाइणु आहे।

0: तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान चयो आहे त गडि॒यल दिफ़ाई माहिदो सिक्योरिटी ऐं दिफ़ाई सहकार खे अॻिते वधाइण में मददगार साबित थींदो। इन सां गडि॒यल मनसूबनि खे हथी डि॒यण ऐं दहशतगर्दी जे ख़ात्मे में पिणु मदद मिली सघंदी। सऊदी अरब जे परडे॒ही वज़ीर फैसल बिन फरहान बि चयो आहे त सऊदी, पाकिस्तान ऐं तुर्किया जो दिफ़ाई माहिदो टिन्ही मुल्कनि जी तरक़ी ऐं खु़शहाली जो सबबु बणिजंदो। माहिदे सां इलाक़ाई अमन खे हथी मिलंदी ऐं उन जा मुसबत असर समूरे खिते ते पवंदा। सदर पारां पाकिस्तान, तुर्किया ऐं सऊदी अरब विच में गॾियल दिफ़ाई मुआदे जी आजियां। सदर आसिफ ज़रदारी चयो आहे त मुआदो खिते में अमुन, सलामती ऐं इस्तेहकाम लाइ अहम अॻभराई आहे, जेको टिन्ही भाइर मुल्कनि जे महफ़ूज़ ऐं खु़शहाल मुस्तक़बिल जो अज़म ज़ाहिर करे थो। मुआदे सां टिन्ही मुल्कनि विच में दिफ़ाई सहकार वधीक मज़बूत थींदो। पाकिस्तान जी दिफ़ाई ताक़त दुनिया ॾिठी ऐं तस्लीम कई आहे। दिफ़ाई मुआहिदा कंहिंजे ख़िलाफ़ जारियत लाइ न पर दिफ़ा लाइ हूंदा आहिनि। वफ़ाक़ी वज़ीर अता तारड़ जो पाकिस्तान, सऊदीया ऐं तुर्किया जे दिफ़ाई मुआहिदे ते बयान। सिंध जे वॾे वज़ीर सैद मुराद अली शाह ऐं पंजाब जी वज़ीर आला मरिम नवाज़ पारां बि त्रिमुल्की दिफ़ाई मुआहिदे जी आछियां। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जी सऊदी वलीअद मोहम्मद बिन सलमान सां मुलाकात। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार ऐं फील्ड मार्शल बि मुलाक़ात में मौजूदु हो। मुलाक़ात दौरान बितरफ़नि लाॻापनि समेत खिते जी मजमूई सूरत हाल ते बि ॻाल्हि ॿोल। कसरुल सबा पहुचण ते वली अहद मोहम्मद बिन सलमान वज़ीर आज़म ऐं वफ़द जो आदर भाव कयो। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, नायब वज़ीर आज़म इसाक डार, सऊदी बादशाह मोहम्मद बिन सलमान ऐं तुर्किया जे सदर रजब तैयब एर्दोगान गॾिजी जुमे जी नमाज़ बि अदा कई। इन खां अॻु वज़ीर आज़म, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, इसाकदार ऐं ॿियनि उमिरो अदा करण सां गॾु काबतुला अंदर बि नफ़ल अदा करे ज़ियारत कई हुई।
1: कि इनका हुकूमत कलैप्स हो चुका, ये जो उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है, ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने नहीं शुरू की।
2: रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
3: इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम बहरा पर होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद आई बा अख्तियार इदारो इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरा पर नई मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कर रेट ते दस्तयाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद। इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन जरिए जै में मिले थी मोटरसाइकिल की कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट, RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वनी थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी जेर निगरानी। इरशाद ऑटोस हालानी रोड मेहरा पर राबते जे लाए 0320180003।
4: खुशखबरी, अपनी जिल्द को दे नई ताजगी, चमक और खूबसूरती हाइड्रा फेशियल के साथ। अब फिकर छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है। गहरी सफाई और फोरी ग्लो जिल्द को नरम और हाइड्रेट करे, सन डैमेज और रंगत बेहतर बनाने में मददगार। फेशियल रेजुविनेशन, साफ तरोताजगी और जवान नजर आने वाली जिल्द, जदीद टेक्नोलॉजी के साथ महफूज और मौसर स्किन केयर। नोट, खवातीन स्टाफ की निगरानी में की जाती है। आज ही अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवाएं। पता, रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नजद रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, थरी रोड, मेहरापुर, 0300-338-5569।
5: मेहरान आयरन स्टोर हालानी, होलसेल डिपो, अ नेम टू बी ट्रस्टेड।
6: सरिया गार्डन, टीयर एंगल, चैनल पट्टी, लोही दरवाजा, सिल्वर जा चौंक, सीमेंट, रेती, क्रेश ऐं रंग वगैरह बाजार खां बारियत दस्तियाब आहिनि।
5: हाणे ई अचो मेहरान आयरन स्टोर, नज़द बलोच पेट्रोल पंप, नेशनल हाईवे, हालाणी।
6: राब्ते लाइ प्रोप्राइटर गुलाम नबी मुगल, 0300-320-4372 ऐं 0242-460100।
3: आशिक होंडा शोरूम मेहरा पर एटलेस होंडा मोटरसाइकिल चौक पर एतमाद आई बा अख्तियार 3S डीलर आशिक होंडा मोटर्स मेहरा पर जिते नई मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कल रेट दे दस्तियाब है सर्विस सेंटर एटलेस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद आशिक होंडा मोटर्स ते पहेंजे होंडा मोटरसाइकिल जी ट्यूनिंग करायो कंप्यूटराइज जैपनी स्टेचिंग मशीन जे जरिए जिनमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वन थी होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी जैर निगरानी आशिक होंडा मोटर्स एड्रेस इंडस बाईपास नस्त रेलवे लाइन मेहरापुर राप्ती जिला आसिम हुसैन आराई 0307 3592120

0: कालम में मौजूद आहिन फौजी भाइरन लाइ ख़ुसूसी रियायत हूंदी राबते लाइ फौजी अब्दुल करीम 0301-54-31-456 ऐं तौकीर अहमद 0306-16-23-793।
1: अपना शहर अपना घर मेहराबपुर और मेहराबपुर की आवाज GAFM 94।

0: It's 9:15 p.m. This time check is brought to you by
1: White-ish Beauty Cream, Glowing Skin Jo Raaz, a product by Biocon International Pakistan. खुशखबरी, लेजर हेयर रिमूवल गैर जरूरी बालों को खत्म करने का जदीद हल। अब फिक्र छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में गिम्स अस्पताल गंबर्ट जिल्द के मशहूर डॉक्टर बशीर अहमद मेमन लेकर आए हैं चेहरे, बाजू, टांगे और पूरे जिस्म के गैर जरूरी बालों को खत्म करने के लिए महफूज और मौसर ट्रीटमेंट, बार बार वेक्स और शेविंग से निजात, नरम, साफ और खूबसूरत जिल्द, कम वक्त बेहतरीन नतायज। अब गैर जरूरी बालों की फिक्र खत्म लेजर हेयर रिमूवल के साथ। आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज्द रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, खरी रोड, मेहरापुर, 03003385 69।

खुशखबरी, जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक साम्हूं वधण बोटा पेट्रोल पंप कोटड़ी कबीर रोड मेरापुर कराची ऐं इस्लामाबाद जो मशहूर डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमण एम ए डी एच एम एस सिंध आर एच एम पी इस्लामाबाद होम्योपैथिक कंसल्टेंट ऐं फैमिली फिज़िशियन सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाबशाह हर अरबा खमीस जुमे छंछर आचर ऐं सूमर।

0: पुराणो नज़लो निछो मथे जो सूर नज़र जी कमजोरी कन जो वण कन जो सूर घट ॿुधण में अचण शुगर ब्लड प्रेशर दिल जा मर्ज फालिज खंघ टीबी मादे जी अल्सर मादे जी जलन दिली जो वधण जिगर जा मर्ज हेपेटाइटिस बी सी गुर्दे जी पथरी मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जे कामयाब इलाज कयो वञे थो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी ख़ारिश फट फुरड़ियो ॿारनि में कद जो न वधण मर्दन ऐं औरतुनि में वज़न जो न वधण उन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वञे थो राब्ते लाइ 0301-2196-851।
1: खुशखबरी, क्या आप बालों के झड़ने से परेशान हैं? अब फिक्र छोड़िए, शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है बालों की जदीद और मौसर इलाज एक्सोसोम्स एंड पीआरपी ट्रीटमेंट के साथ बालों का झड़ना कम करने में मददगार कमजोर जड़ों को मजबूत बनाए नए बालों की निशोनुमा में मदद दे बालों को घना और सेहतमंद बनाए घने मजबूत और खूबसूरत बालों के लिए आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद थरी रोड मेहरापुर 0300-338-5569।
2: इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरापुर होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद आई बा अख्तियार इदारो इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरापुर नईन मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कर रेट ते दस्तयाब आहे सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन ज़रिए जंहिंमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन ज़रिए कई वञे थी होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी ज़ेर निगरानी इरशाद ऑटोस हालाणी रोड मेहरापुर राब्ते जे लाइ 0320-18-00-003।
1: खुशखबरी, अपनी जिल्द को दे नई ताजगी चमक और खूबसूरती हाइड्रा फेशियल के साथ अब फिक्र छोड़िए आपके शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है गहरी सफाई और फोरी ग्लो जिल्द को नरम और हाइड्रेट करे सन डैमेज और रंगत बेहतर बनाने में मददगार फेशियल रेजुविनेशन साफ तरोताजगी और जवान नजर आने वाली जिल्द जदीद टेक्नोलॉजी के साथ महफूज और मौसर स्किन केयर नोट खवातीन स्टाफ की निगरानी में की जाती है आज ही अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवाएं पता रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक नज़द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद थरी रोड मेहरापुर 0300-338-5569।
3: अस्सलाम अदा छो परेशान आई
4: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो छा कजे
3: अदा दुकान जी मशवरी कराई थई
4: न अदा
5: यार आज कल शहरन तोड़े गोठन में जी मेरा पर FM 94 ही हले थो मु पंजो दुकान खोलियो त FM मेरा पर ते पब्लिसिटी कराई कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे
4: मुझे दुकान जी बेड हलंदी
3: हां दा कारोबारी इश्तिहारात आम इतला मिलाद मजलिस सालगिरह जी मुबारक मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी आए
4: अदा जल्दी कर मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा
5: ऑफिस जी मेरापुर FM 94 नज़्द गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालाणी रोड मेरापुर राबते लाए मंसूर अहमद मेमन 0301-380-8347।
6: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है सुनते रहो जी FM 94।

वापडा भारती आबी जारियत रोकण जो जवाब ॼाणाए टिन सूबनि जी रद्द कयल तकरारी कालाबाग डैम रिथा में साह विझण जो वरितो आहे। तकरारी रिथा अखोड़ी डैम बि वापडा जे हाणोके प्लान में शामिल। चनाब दरिया ते चार नंढा डैम ठाहिण जो बि फ़ैसिलो। मंगला खां मराला ताईं 10,000 क्यूसिक जो कैनाल ठाहिण जो मनसूबो बि प्लान में शामिल कयो वियो। तकरारी कालाबाग डैम ऐं अखोड़ी डैम समेत ॿियनि रिथाउनि ते सिंध खां हिमायत हासिल करण जूं कोशिशूं। वापडा सिंधु दरिया में कोटड़ीअ खां हेठि वेंदड़ पाणी खे बि ज़ियान करार ॾेई छॾियो। सिंध हुकूमत खां अंग अखर तलब। के टी एन न्यूज़ गुज़िरियल महीने वापडा चेयरमैन जी सदारत हेठि थियल गॾिजाणीअ जा तफ़सीलत करे वरिता। वापडा अख़्तियारनि मौक़िफ़ अख़्तियार कयो त चनाब जे पाणी ते भारती जारियत वधी रही आहे। आलमी अदालतुनि ज़रिए मसइलो हल करणु ॾुखियो आहे। सिफारती ज़रिया बि इस्तेमालु थी चुका आहिनि। हाणे भारतीय आबी जारियत खे मोहन ॾियण लाइ मुल्क अंदरि वधीक डैम ऐं पाणीअ जा ज़ख़ीरा ठाहिणु घुरिजनि। सिंध जे आपाशी अख़्तियारनि वॾे वज़ीर सैद मुराद अली शाह खे ब्रीफिंग ॾिनी त इजलास में सिंध कंहिं बि मनसूबे जी हिमायत न कई ऐं सभिनी मनसूबनि जा तफ़सील पेश करण जो चयो। इहो बि वाज़े कयो वियो त कोटड़ीअ खां हेठि पाणी ज़ियान नथो थिए। इहो वहिकिरो डेल्टा जी बका लाइ ज़रूरी आहे।

पाकिस्तान, सऊदी अरब ऐं तुर्कीअ मां कंहिं हिक ते हमिलो टिन्ही मुल्कनि ते सम्झो वेंदो। टिन्ही मुल्कनि तारीख़ी मका गॾियल दिफ़ाई मुआदो करे छॾियो। सऊदी अरब जे शहर मका मुकरमा में टिन्ही मुल्कनि जो सरबराही इजलास में मुआदे ते सहियूं कयूं वियूं। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान, वज़ीर आज़म शाहबाज़ शरीफ़ ऐं तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान मका दिफ़ाई मुआदे ते सहियूं कयूं। वॾे वज़ारत जे तर्जुमान चयो आहे त मुआदे तहत टई मुल्क दिफ़ाई सहकार खे हथी ॾींदा। मुआदे तहत कंहिं बि हिकु मुल्क ते हमिलो टिन्ही मुल्कनि ते हमिलो तसवुरु कयो वेंदो। मुआदे जो मक़सदु टिन्ही मुल्कनि जे दिफ़ाई निज़ाम खे मज़बूत बणाइणु आहे।

0: तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान चयो आहे त गॾियल दिफ़ाई माहिदो सिक्योरिटी ऐं दिफ़ाई सहकार खे अॻिते वधाइण में मददगार साबित थींदो। इन सां गॾियल मनसूबनि खे हथी ॾियण ऐं दहशतगर्दी जे ख़ात्मे में पिणु मदद मिली सघंदी। सऊदी अरब जे परॾेही वज़ीर फैसल बिन फरहान चयो आहे त सऊदी पाकिस्तान ऐं तुर्किया जो दिफ़ाई माहिदो टिन्ही मुल्कनि जी तरक़ी ऐं खुशहालीअ जो सबब बणिजंदो। माहिदे सां इलाक़ाई अमुन खे हथी मिलंदी ऐं उन जा मुसबत असर समूरे खिते ते पवंदा। सदर पारां पाकिस्तान तुर्किया ऐं सऊदी अरब विच में गॾियल दिफ़ाई माहिदे जी आजियां। आसिफ ज़रदारी चयो त माहिदो खिते में अमुन, सलामती ऐं इस्तेहकाम लाइ अहम अगभराई आहे जेको टिन्ही ॿाहिरि मुल्कनि जे महफ़ूज़ ऐं खुशहाल मुस्तक़बिल जो अज़म ज़ाहिरु करे थो। माहिदे सां टिन्ही मुल्कनि विच में दिफ़ाई सहकार वधीक मज़बूत थींदो। पाकिस्तान जे दिफ़ाई ताक़त दुनिया ॾिठी ऐं तस्लीम कई आहे। दिफ़ाई माहिदा कंहिंजे ख़िलाफ़ जारियत लाइ न पर दिफ़ा लाइ हूंदा आहिनि। वफ़ाक़ी वज़ीर अता तारड़ जो पाकिस्तान सऊदीया ऐं तुर्किया जे दिफ़ाई माहिदे ते बयानु। सिंध जे वॾे वज़ीर मुराद अली शाह ऐं पंजाब जी वज़ीर आला मरियम नवाज़ पारां बि टि मुल्की दिफ़ाई माहिदे जी आजियां।
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: मेहराबपुर के हो तो आवाज भी मेहराबपुर की है। सुनते रहो GFM 94।